0: Radio 2000 98.5 FM Community Program.
1: सामाजिक हिंदी कार्यक्रम दर्पण आकाशवाणी 2098.5 FM.
0: Welcome to the Hindi Show, featuring news, interviews, music and community announcements.
1: स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में. आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं.
0: Radio 2000 98.5 FM, Multicultural Radio.
2: क्या आप ऐसे काम की खोज में हैं जो आपको बहुत कुछ दे सके? ज्यादा जोश, ज्यादा ठोस काम, ऐसा काम जिससे आप अपने स्थानीय समुदाय में बदलाव ला सकें. पुलिस रिक्रूट्स सर्च करें. NSW पुलिस फोर्स, हमारा काम बहुत मायने रखता है.
3: 2000 स्टेशन स्पॉन्सर.
4: आज रविवार युगात 5126 कलयुग विक्रम संवत 2083 कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा 27 सितंबर 2026 है. दर्पण के सुनने वाले सभी श्रोताओं को पूनम की नमस्ते. इस सप्ताह के समाचार इस प्रकार हैं. गणेश चतुर्थी पर देश भर में बप्पा की पूजा हुई, लेकिन हजारों किलोमीटर दूर एंटार्क्टिका में मौजूद भारतीय वैज्ञानिकों ने भी इस त्यौहार को खास अंदाज में मनाया. यहाँ वैज्ञानिकों ने बर्फ से भगवान गणेश की प्रतिमा बनाई, उसकी पूजा की और फिर उसी में विसर्जन की रस्म भी निभाई. इस अनोखे सेलिब्रेशन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. उत्तर प्रदेश के कानपुर में गुज्जैनी थाना क्षेत्र में गणेश विसर्जन यात्रा के दौरान अचानक बम फोड़े जाने के से हड़कंप मच गया. फतेहपुर गांव के पास यात्रा को कथित तौर पर करीब 2 दर्जन लोगों ने घेर लिया. पहले फिर फायरिंग और बमबाजी हुई, जिससे यात्रा में शामिल लोगों में भगदड़ मच गई. इसके बाद कथित तौर पर लाठी डंडे और कुल्हाड़ी लेकर कुछ लोगों ने भक्तों के साथ मारपीट शुरू कर दी. विसर्जन यात्रा में बमबाजी और मारपीट की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया. फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है. आरोपों की पुष्टि और हमले में शामिल लोगों के खिलाफ आगे की कार्रवाई पुलिस जाँच के आधार पर होगी. माफ कीजिएगा. चुनाव आयोग के अंदरूनी मतभेद को मीडिया में के खुलासे ने उजागर कर दिया, लेकिन आयोग की सफाई ने कई दावों की ओर धार कुंद कर दी. खास तौर पर उन आरोपों की, जब ये कहा जा रहा था कि पूरा चुनाव आयोग सरकार के इशारे पर काम कर रहा है, लेकिन इस खुलासे से कई गंभीर सवाल अंतरित छोड़ दिए. जैसे चुनाव आयुक्तों की मर्जी के बिना फैसले हुए तो उन्होंने इसकी शिकायत राष्ट्रपति से क्यों नहीं की. हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट ने चुनाव आयोग में अंदरूनी कामकाज पर एक गंभीर बहस छेड़ दी है. रिपोर्ट ने दावा किया है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान देश भर में ड्राफ्ट रोल से 13 करोड़ से अधिक नाम हटाए गए और इसी अवधि में आयोग के 2 सदस्य सुखबीर सिंह सिंधु और विवेक जोशी ने 10 महीनों में कम से कम 14 बार लिखित आपत्तियां दर्ज की. यह आपत्तियां ECI नेट सॉफ्टवेयर के कथित सेंट्रलाइजेशन फॉर्म 6 में बदलाव पर पश्चिम बंगाल में अपीलों और प्रशासनिक आदेशों जैसे मुद्दों पर थी. रिपोर्ट का मूल मैसेज यह था कि बहुमत वाले आयुक्त कई फैसलों से अनजान रखे गए, जिससे संस्था की प्रकृति और वैधानिक अधिकारों का पर सवाल उठा. सिक्किम में गुरुवार 24 सितंबर की रात को भारी लैंडस्लाइड हो गई. घटना के बाद पहाड़ी का मलबा तेजी से गांव की तरफ बहता हुआ पहुंचा. लैंडस्लाइड की वजह से कई घर टूट गए, जिससे काफी नुकसान हुआ. जानकारी और मुताबिक सिक्किम के रिम्बी गांव में इस लैंडस्लाइड ने बड़ी तबाही मचाई। पीएम मोदी ने नई दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय पार्क में आयोजित भजन क्लबिंग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यह कार्यक्रम भारतीय जनसंघ के नेता और बीजेपी के खिलाफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 10वीं जयंती के मौके पर आयोजित किया गया। भक्ति संगीत कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी दर्शकों के बीच बैठे और कलाकारों के साथ मिलकर राम भजन के गीत गाते दिखे और तालियां बजाईं। पीएम मोदी ने इस साल की शुरुआत में अपने मन की बात कार्यक्रम में भजन क्लबिंग ट्रेंड के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा था कि युवाओं में बढ़ती दिलचस्पी आध्यात्मिकता, संस्कृति और आधुनिकता का मिला जुला रूप है। उन्होंने इस प्रकार के कार्यक्रमों के माहौल की तुलना ग्लोबल कॉन्सर्ट से भी की थी। तब से यह ट्रेंड भारत के कई शहरों में होने वाले कार्यक्रम में देखा गया है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए DADR यानी महंगाई भत्ते और महंगाई राहत पर बड़ी खबर सामने आई है। केंद्रीय कर्मचारियों के एक बड़े राष्ट्रीय संगठन ने 1 जुलाई 2026 से लागू होने वाली महंगाई भत्ते को लेकर सरकार को पत्र लिखा है। इस पत्र में त्योहारों से पहले DADR बढ़ोतरी के ऐलान की मांग की गई है। कर्मचारियों और पेंशनर्स को उम्मीद है कि सरकार उनके इस पत्र का पर विचार करेगी और दुर्गा पूजा दशहरा से पहले DADR हाइक का ऐलान कर सकती है। भुज भुरानी अमृत भारत एक्सप्रेस। भारतीय रेलवे ने गुजरात के भुज और बिहार के बरौनी के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस चलाने की मंजूरी दे दी है। यह ट्रेन 5 राज्यों को जोड़ते हुए 2532 किलोमीटर का सफर तय करेगी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस ने विशेष न्यायाधीश एंटी करप्शन की अदालत में चार्जशीट दाखिल की है। इसमें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी अनिल मिश्र और निर्माण प्रभारी गोपाल राव को आरोपी नहीं बनाया गया। तीनों को सरकारी गवाह बनाया गया है। चार्जशीट में 133 करोड़ का जिक्र है। 400 पेज के आरोप पत्र और 101 केस डायरी में पर्चे में भी इनमें शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में पाकिस्तान के पीएम शाहबाज शरीफ ने भारत से जुड़े हुए मुद्दों को उठाते हुए पाकिस्तान का पक्ष रखा। उन्होंने मई 2025 में हुए भारत पाकिस्तान सैन्य तनाव का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय दोनों परमाणु संपन्न देश बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़े थे और अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समय पर हस्तक्षेप से हालात और नहीं बिगड़े। इसके साथ सिंधु जल संधि को लेकर भी कड़ा रुख अपनाया गया और पाकिस्तान के हिस्से के पानी में किसी भी तरह की बाधा को युद्ध जैसी कार्रवाई बताया गया। अमरीकी कांग्रेस ने 16 सितंबर को लिंसे ओग्राम सैंक्शनिंग रशिया और ईरान एक्ट को 2062 के मुकाबले 149 मतों से पास किया। अमरीकी सेनेट ने इस बिल को भारी बहुमत से 7 अगस्त को पास किया था। अब ट्रंप को भारत पर 100% तक टैरिफ लगाने का अधिकार मिल गया है। इस बिल से पास होने के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि चीन और भारत को अपना रवैया सुधारना चाहिए और तेल गैस कहीं और से खरीदना चाहिए। महाराष्ट्र के जलगांव जिले की जामनेर MIDC में हिंदुस्तान कोको कोला बेवरेजेस का बॉटलिंग प्लांट लगाने की आयोजना है। फिलहाल यह प्रोजेक्ट केवल कागजों पर है और कारखाने का निर्माण अभी शुरू नहीं हुआ, लेकिन पानी, पर्यावरण और रोजगार को लेकर इस प्रोजेक्ट पर विवाद शुरू हो गया है। एक तरफ स्थानीय कार्यकर्ता और किसान विरोध कर रहे हैं तो दूसरी तरफ राज्य सरकार का दावा है कि इससे बड़ा निवेश आएगा और रोजगार के भी मौके बढ़ेंगे। खेल समाचारों में एशियन गेम्स में भारतीय निशानेबाज कमलजीत और सुरुचि सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। सरम बरवाल ने मेंस मैराथन में 44 सालों के पदक के इंतजार को खत्म किया और 2.1137 का समय लेकर सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया। फिल्म समीक्षा में करीब 5 दशक पहले दुनिया छोड़ चुके एक संत उत्तराखंड की पहाड़ियों में बना एक आश्रम और इस संत के जीवन पर से प्रेरित होकर फिल्म बनी हनुमान अंश। फिल्म की शुरुआत हिंदी फिल्मों जैसी नहीं थी, मगर फिल्म इस समय सुर्खियों में शुमार है और मशहूर फिल्म आलोचक तरुण आदर्श के मुताबिक फिल्म कुल रेवेन्यू के मामले में 300 करोड़ के निकट पहुंच गई है। फिल्म का पैमाना और उसकी कमाई इसलिए भी ध्यान खींचती है क्योंकि बीबीसी न्यूज़ हिंदी से बातचीत के दौरान इस फिल्म की प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर ने फिल्म की लागत को 2 करोड़ रुपए से भी कम बताया। नीप करोरी बाबा का किरदार शोभिनव सत्य ने निभाया। उन्होंने किरदार को बखूबी निभाया और जिस तरह से दर्शकों का रिस्पॉन्स आया है उससे पता चलता है कि उन्होंने इस किरदार को बड़े ही शानदार तरीके से निभाया है। स्क्रीन प्ले पर इतनी सफाई से काम हुआ है कि आपको कहानी के उस दौर का एहसास होने लगता है। इस फिल्म का एक गाना इंटरनेट पर वायरल है जिसे सुनील सोदी ने गाया। वे दोनों आंखों से दृष्टिहीन हैं। एक इंटरव्यू के अनुसार सुनील की आंखों के इलाज के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मदद का आश्वासन दिया है। भक्ति, संतों की जिंदगी और आस्था पर बनी कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, जैसे कि 2025 में रिलीज हुई महाअवतार नरसिंह ने बॉक्स ऑफिस पर 325 करोड़ की कमाई की थी। कैंची धाम की लोकप्रियता को देखते हुए सरकार ने वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करने का फैसला लिया है। इससे यह पता चलता है कि कैंची धाम के प्रति आकर्षण अब सिर्फ धार्मिक या सांस्कृतिक घटना की ही नहीं रह गई बल्कि प्रशासन और टूरिस्ट प्लानिंग का भी विषय बन चुकी है। दिल्ली सराफा बाजार बंद होने तक स्टैंडर्ड सोने का भाव 1,44,758 रुपए प्रति 10 ग्राम है। डॉलर की विनिमय दरें इस प्रकार हैं: अमरीकी डॉलर 95 रुपए 82 पैसे, ऑस्ट्रेलियन डॉलर 67 रुपए 56 पैसे। इसी के साथ इस सप्ताह के समाचार समाप्त हुए।
5: श्रोताओ, आज आप प्रोग्राम सुन रहे हैं, हमारे साथ पूनम जी की आवाज़ आपने सुनी ली है, मधुर आवाज में बोलूँगा, और हमारी नंदिनी आ जा रही है वापस।
4: वेलकम बैक नंदिनी।
5: सी वॉज यू नो जो मैं मुझे तो डर लग रहा था जब बोला कि मैं यूरोप जा रही हूँ, मैंने कहा कि आई मार लूज दिस गर्ल, बट शी इज़ बैक, सो वेलकम बैक नंदिनी।
6: थैंक यू। नमस्ते श्वेता, थैंक यू फॉर हैविंग मी बैक प्रोग्राम पे। अब हम वापस
5: जी, तो ये यंग लोगों का भरोसा नहीं होता है, यू नो कब उड़ जाए। तो एक और हमारे साथ में है, वो आज वो हमारे साथ में मेहमान है। आज हमारे साथ में प्रदीप जी मेहमान है, वो लेखक के तरीके से हैं श्रोताओं। तो प्रदीप कुमार सिन्हा लेखक, तो उन्होंने एक किताब लिखी है, उसके बारे में बात करेंगे। मैं तो बहुत ही प्रभावित भी हुआ हूँ और मेरी भी आशाएं जगी कि मैं खुद कुछ लिखना चाह रहा था, तो शायद मेरे लिए भी बड़ा अच्छा होगा कि मैं कुछ उनसे जान पाऊँ, सीख पाऊँ, और अपने श्रोताओं को भी मैं चाहूँगा कि वो भी सीखें उनसे कि कैसे अपने यू नो यादों को, अपने अनुभवों को एक किताब में संजोया जाए। श्रोताओं, जैसे कि हमने लिखा है अपने उसमें, तो थोड़ी देर के बाद में हमारे एक और मेहमान आएंगे, वो सात्विक या सनातन फूड के बारे में बात करेंगे कि कैसे कैसे क्या चीज़ होती है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो पूनम जी,
4: जी
5: आज का विचार क्या है हमारे श्रोताओं के लिए?
4: जी श्रोताओं, आज के विचार का टाइटल है खूबसूरती और व्यवहार। हम सब लोग खूबसूरती से पहले प्रभावित होते हैं और बाद में व्यवहार पर सोचते हैं।
5: बिल्कुल सही बोला है।
4: तो हो सकता है कि आपको किसी की खूबसूरती पसंद आ जाए और उससे प्यार हो जाए, लेकिन हमेशा एक बात याद रखना, आखिर में आपको उसके चरित्र और व्यवहार के साथ ज़िंदगी गुजारनी है, ना कि उसकी खूबसूरती के साथ। खूबसूरती आज है कल नहीं, लेकिन उसका व्यवहार हमेशा वैसा ही रहेगा जैसे पहले दिन था।

0: व्यवहार से मान और सम्मान दे।
1: क्या बात, बहुत प्रैक्टिकल बात बोली है आज आपने।
0: सुंदर है ये विचार जी।
1: तो एक भजन सुना जाए, ये AI वाला भजन है।
0: ओके।
1: और आप देखिएगा, मैं मुझे बताना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी सुनिए, वो आप बताइए कि कैसा लगा आपको।
2: This is what your bicycle sounds like to drivers as you approach an intersection. You're totally silent. Drivers can't hear you, so make sure they can see you. Wear a brightly coloured helmet and clothing when riding. We're all just people on the move, so let's look out for each other on our roads. A message from the New South Wales Government.
3: 2000 station sponsor.

0: श्रोताओ, ये भजन आपको कैसा लगा? बहुत ही ईमानदारी से हमें बताइए। अगर नहीं भी अच्छा लगा है तो जरूर मुझे बताइए। ये AI, फुल्ली AI जनरेटेड भजन था। मैं अभी आपको एक परिचय करा रहा हूँ हमारे शौर्य जी, शौर्य सक्सेना जी उनका पूरा नाम है। शौर्य जी, दर्पण रेडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्ते यतीन जी।
0: शौर्य जी, आपने ये भजन सुना, आपको कैसा लगा?
1: ये भजन तो बहुत ही बढ़िया है और हमने भी जो है कुछ कुछ जो है AI पे ट्राई करा है। हमने भी अच्छा, भजन बनाने का, भजन की लिरिक्स बजाने का, उसकी म्यूजिक बनाने का।
0: तो अभी
1: AI जो है इसका अच्छे तरीके से अगर यूज करा जाए तो ये सबकी बहुत हेल्प कर सकता है।
0: ये अच्छे तरीका क्या होता है?
1: इसको जो है आप ये सोचिए कि अपनी क्रिएटिव उससे आप ऐड करें। तो एक होता है कि आप जो है एक म्यूजिक आर्टिस्ट है, वो अपना जो है म्यूजिक बना रहे हैं, ठीक है। आप बनाते हो, आपको नहीं पसंद आता है, आप फिर सोचते हो, चार लोगों से फीडबैक लेते हो कि आप बताओ। AI में आप अपना म्यूजिक डालो, आपको तुरंत फीडबैक मिलता है। तो जो आपका फीडबैक साइकिल है बहुत जल्दी हो जाता है। तो आपको फीडबैक मिलेगा, आप उसे फटाक से चेंज करो, आप उसे और अच्छा करो, आप उसे फिर फीडबैक मिलेगा। तो आप उससे जो है आपका और रीच भी बहुत ज्यादा है, बिकॉज AI के अंदर ऑलरेडी इतने ज्यादा मॉडल्स हैं, दुनिया भर की म्यूजिक उसके अंदर है। तो उससे आपको बहुत अच्छा अच्छा जो है चेंज हो जाता है। तो उसके अंदर उनके जो डेटा स्टोर है उनके अंदर दुनिया भर का म्यूजिक है। तो आपको फटाक से जो है आप बस अपना आप बनाइए और आपको फीडबैक मिलेगा, तो वो बहुत अच्छा
0: है। अच्छा, ये बात मालूम थे लेकिन मैं इस तरीके से उसको नहीं समझ रहा था। वेरी गुड पॉइंट। अच्छा सौर्य जी, सॉरी मैं आपको सीधे डिस्कशन में लेके गया, थोड़ा अपने बारे में बता दीजिए हमारे श्रोताओं को।
1: जी मेरा नाम शौर्य सक्सेना है और मेरा एक जो है हमारा एक म्यूजिक ग्रुप है, उसका नाम है सुर वाइब्स। आप उसको जो है फेसबुक और इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं। अगर आप सर्च करना चाहें तो survives.syd survives. तो ये हमारा ग्रुप है।
0: आपने भी हिंदी और अंग्रेजी का मिक्स करा है,
2: फ्यूजन कर दिया।
0: आपने अगर मैं आपसे, चलो ऐसे ही पूछ लेते हैं कि आपने ऐसा क्यों करा? आपने हिंदी में जैसे लोगों की आकांक्षाएं ऐसे ही होती हैं कि भाई हिंदी में होना चाहिए, वो मे बी यू नो सरल हिंदी और संस्कृत और ऐसा हो नाम, जो आपने यू नो बिल्कुल इंग्लिश उसमें कर दिया सुर वाइब्स करके। किसी लोगों को तो ये भी नहीं मालूम होगा कि वाइब्स का मतलब क्या होता है, ऐसा आपने क्यों रखा?
1: देखिए अगर आप ध्यान देंगे तो अभी जो है हम लोग जो है दोनों चीजें, पहले हम लोग अपना कल्चर जो इंडिया से हमारा है सनातन कल्चर, ओके, उससे काफी ज्यादा जुड़े हुए हैं, उसको हम जो है मॉडर्न वे में कैसे लेके आए। तो वी वॉन्टेड टू कनेक्ट विद बोथ द ऑडियंसेस, जो हमारे ट्रेडिशनल ऑडियंस है और जो हमारी न्यू जेन जी यंग ऑडियंस है, तो दोनों से हम कनेक्ट करना चाहते हैं। तो जो हमारा म्यूजिक भी जो है वो ऐसा है कि वो दोनों लोगों के लिए है, ओके। तो जैसे अभी हम कहीं भी जाके अगर भजन वगैरह भी करते हैं तो हम ट्रेडिशनल वे तो है ही है, बट वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ भजन क्लबिंग जैसे। तो उससे क्या होता है, जो अपनी जेन जी है, नेक्स्ट जनरेशन है, उसको जो है वो लोग बहुत ज्यादा कनेक्ट होते हैं। तो इसलिए हमने थोड़ा नेम ऐसा रखा था कि it relates to both of them. Yeah, so they, it's very important कि identity अगर relate होती है सबसे तो they get attracted to
0: जी,
1: it.
0: जी, सही बात है।
1: associate होना चाहते हैं।
0: सही बात। तो ये भजन क्लबिंग का जैसे आपने बोला है, तो आप ये रेगुलर शोज करते हैं, कैसे है आप, कैसा करते हैं आपको?
1: So, भजन क्लबिंग जो है अभी इनफैक्ट लाइक सभी ने देखा होगा, अभी तो इंडिया में बहुत बड़ी लहर चल रही है भजन क्लबिंग की। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी अभी रिसेंटली दिस वीक जो है एक काफी बड़े इवेंट में गए थे। सो सी हम लोग जो है ट्रेडिशनल भजन तो हम लोग कब से करते आ रहे हैं, मंदिरों में, घरों में पूजा होती है, हर बार होता है, हमेशा हमेशा ही भजन होते हैं, हम लोगों ने बचपन से देखा है भजन होते हैं। इसको ही जो है हम लोग, जैसे अब हम ऑस्ट्रेलिया में हैं तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन को हम कैसे कनेक्ट करें अपने कल्चर से, तो इट द सेम भजन बट उसमें हमने थोड़े मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट यूज करें, जैसे कि गिटार हो गया, पर्कशन नए वाले हो गए, ड्रम्स वगैरह हो गए, उसको थोड़ा सा लाइवली और लाइवली करा, उसको खूब अच्छी तरीके तेजी से परफॉर्म करो तो पीपल कनेक्ट। आप आइए वहां पे डांस करिए, तो भजन आप सुनने के लिए नहीं है सिर्फ, भजन आप डांस करने के लिए भी।
0: उसको एक्सपीरियंस करने के लिए, अगर उस तरीके से बोले जाए, जब वो जाए वहां पे तो लगे कि आपको अगर थोड़ा नाचना भी है, अगर पैर आपके अपने आप ही नाचने लगे, मैं समझता हूँ कि वो फिर आपका एक्सपीरियंस हो जाता है, नहीं?
1: जी जी जी, हम लोग जो
0: पैर थिरक रहे हैं आपके,
1: हैं? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत जरूरी है। वो जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप देखिए आज की डेट में जो यंगस्टर्स हैं अपने, उनको हम लोग डिवोशन भगवान से कैसे जोड़े, ठीक है? तो इट इज वेरी इम्पोर्टेंट। So, और नेक्स्ट जो है यंगस्टर्स वगैरह हैं, वो लोग आते हैं, वैसी पार्टी कर रहे हो, तो आप पार्टी जो है भजन क्लबिंग की तरह आप करो आप पार्टी।
0: जी अच्छा, ये बताइए आप जो प्रोग्राम कर रहे हैं इसके बारे में, थोड़ा उसके बारे में बताइए।
1: तो अभी हम लोग जो है अक्टूबर में हम लोग होमबुश बॉयज हाई स्कूल में एवरी फ्राइडे फ्रॉम 9th ऑफ अक्टूबर till 31st of October, we are going to do bhajan clubbing event in the evenings from 6:30 PM to 8:30 PM. तो ये जो है we want कि सब लोग आए अपने family, friends, बच्चों के साथ में। We want to showcase कि bhajan clubbing किस तरीके से करते हैं, and people will enjoy, बहुत ज्यादा enjoyment होगा वहां पे और भगवान से भी जुड़ेंगे, तो वो जो है मतलब it's a different experience. So आप आओ वहां पर, अपनी फैमिली के साथ आएंगे, भगवान के साथ कनेक्ट करेंगे और सोशलाइज भी करेंगे जो है।
0: तो इसमें
1: और वैसे भी अभी जो है फेस्टिवल सीजन आ रहा है, हम लोग का नवरात्रे है, दिवाली आ रहा है, तो हम लोग जो है डिफरेंट डिफरेंट थीम्स पे करने वाले हैं, तो हम लोग अभी सोशल मीडिया पे वील सेंड आउट डिटेल्स एज वेल ऑफ दीज इवेंट्स। बट और मेरा फोन नंबर है, हम लोग जो है वहां पर सेवा भी देख रहे हैं, वहां पे भोजन प्रसाद भी होगा हम लोग का इवनिंग में, और हम लोग को वॉलंटियर्स भी चाहिए, तो इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड टू ज्वाइन अस प्लीज कॉन्टेक्ट मी। मेरा फोन नंबर है 0470371242।
2: यतीन जी मैं यहाँ कुछ कहना चाहूंगी।
0: पूनम जी हमारी कुछ पूछना चाहती हैं।
2: नहीं मैं शौर्य जी से बिल्कुल सहमत हूँ कि जैसे कि इन्होंने भजन क्लबिंग, ये भी हिंदी और इंग्लिश के दो शब्द यूज, अब यंगस्टर्स को इनवाइट करने के लिए अगर आप कहें भजन संस्था या भजन की एक शाम या खाली भजनों भरी शाम, कुछ इस तरह का नाम रखें, तो वो सीधा रिलेट करेंगे कि भाई मम्मी पापा जाएंगे, बड़े बुजुर्ग जाएंगे, पर जब वर्ड क्लबिंग ज्वाइन कर दिया तो शायद ये वर्ड यंगस्टर्स को अट्रैक्ट करेगा। और इवन हमारे अब जब हम भजन इस कलयुग के माहौल में कहा गया है कि कीर्तन ही सबसे आसान तरीका है ईश्वर को पाने का, तो शौर्य जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो
0: मैं अपनी नजरी से पूछे थे वो क्या सोचते हैं, होर्स माउथ है,
3: जेन जी ओपिनियन।
2: हाँ
3: नहीं मुझे लगता है बहुत अच्छा प्रोग्राम है, लाइक ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी भी है, तो कि जैसे कहा गया है कि लाइक वो क्लबिंग नाम रखने से थोड़ा सा अपील करता है यंगर जनरेशन को, और वो नहीं लगता कि हाँ कि लाइक मेरे एज ग्रुप के भी वहाँ पर लोग होंगे, मैं उनसे रिलेट कर पाऊँगी, बात कर पाऊँगी, और उससे कनेक्शन बढ़ता है, कम्युनिटी उसी से बढ़ती है जब आप जिन लोगों के साथ जा रहे हो उनके साथ आप फ्रेंडशिप्स बना सको या फिर रेगुलर उसके साथ मीटिंग कर सको, तो आई थिंक कि उस तरीके से कनेक्शंस भी बढ़ते हैं और फिर ज़्यादा वो क्लोसिविटी भी आती है अपने रिलीजन वगैरह से।
0: लेकिन इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि जो प्रदीप जी, अब आपको मैं इसमें शामिल करना चाहता हूँ, आप जैसे लोग क्या सोचेंगे कि भाई इसमें मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, ये भी तो प्रॉब्लम है ना कि
2: वहाँ सारे यंगस्टर्स हैं तो मैं क्या करूँगा।
0: एग्जैक्टली
4: नहीं तो इसका इलाज ये है इतेंद्र जी कि बड़े लोग भी जाए यंग लोग भी जाए, मिक्सिंग तो जरूरी है ना बच्चों और बड़ों में। बच्चों और बड़ों में जब तक मिक्सिंग नहीं होगी तब तक मजा नहीं है।
0: एग्जैक्टली
4: अब आप बड़ों को,
0: लेकिन ये है ना प्रश्न ये था प्रदीप जी कि अगर मान लो समझो आप ही सुन रहे हैं और आपको भी यार ये तो लगता है कि यंग लोगों का है, मैं इसमें मेरा इसमें क्या काम?
4: आपको अपना सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा।
0: Okay.
4: आपको ये सोचना पड़ेगा अरे इतना अट्रैक्टिव है बच्चे लोग आएंगे हमें भी अच्छा लगेगा,
2: नहीं हम जा रहे हैं चलो बच्चों तुम भी चलो।
4: नहीं इसे इस तरह से करिए बच्चे लोग कहें कि चलिए मम्मी पापा आप भी
2: चलिए। हाँ दोनों तरफ से
0: हम दोनों के लिए है,
4: हम सबके लिए।
2: ये एक ऐसा इवेंट है जिसमें बड़े भी शामिल हो सकते हैं और बच्चे भी, बच्चे यंगस्टर्स भी।
3: बोलते हैं ना कि हाँ हम यहाँ जा रहे हैं लेकिन ये तुम्हारे लोगों एज ग्रुप के लिए भी फंक्शन है, हाँ, तो वो ज्यादा अपील होंगे। तो कि अगर आप सीधा बच्चों को ये बोलोगे कि हाँ आज जैसे इवेंट में जाना है वहाँ पर भजन सुनेंगे, तो इतने सारे बच्चे नहीं होंगे जो हाथ खड़ा करके ऐसे बोलेंगे हाँ मुझे जाना है। पर जब आप ये बोलोगे कि हाँ वहाँ पर जैसे बहुत सारे एज तुम्हारे एज ग्रुप के बच्चे आ रहे हैं ठीक है तुम वहाँ पर मिल पाओगे बहुत सारे फ्रेंड्स बनेंगे तो ज्यादा वो कनेक्ट।
0: मोदी जी ने इसका
2: जी ऑलरेडी आगवान कर दिया,
0: मोदी जी ने ऑलरेडी वो कर दिया है, वो अपनी वो भी लेके गए थे डपली
2: जी डपली लेकर वो वीडियो बहुत
0: वो भी लेके गए थे। तो सौर्य जी प्रोग्राम के बारे में दोबारा से बता दीजिए और अगर श्रोताओं कोई वॉलंटरी भी बनना चाहता है कुछ पार्टिसिपेट करना चाहता है तो भी आप सौर्य जी को संपर्क कर सकते हैं। तो सौर्य जी दोबारा से प्रोग्राम और अपना फोन नंबर बताएंगे तो अच्छा है।
1: जी जी जी तो हमारा प्रोग्राम जो है वो होमबुश बॉयज हाई स्कूल में एवरी फ्राइडे स्टार्टिंग फ्रॉम 9th ऑफ अक्टूबर फॉर 4 weeks है फ्रॉम 6:30 PM टू 8:30 PM और वहां पर हम लोग भजन क्लबिंग के साथ साथ थोड़ी सी सेवा डिवोशनल म्यूजिक भी होगा प्लस भोजन प्रसाद भी होगा। सो प्लीज अगर कोई भी सेवा करना चाहता है आगे आके तो प्लीज मुझसे कॉन्टैक्ट करें, मेरा फोन नंबर है 0470-371-242। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू क्रिएट दिस मेगा इवेंट इन होमबुश और वहां पे जो है हम लोग ये अपनी नेक्स्ट जनरेशन सोसाइटी प्लस जो हमारा एग्जिस्टिंग, मैं आपका डिस्कशन सुन रहा था यतीन जी, तो जो हमारा एग्जिस्टिंग हमारी जनरेशन है यस सब लोग मतलब वहां पे जो है एवरीबॉडी इट्स एवरीबॉडी एंजॉयज मतलब हम लोग उसमें देखा है हमने पेरेंट्स के साथ में किड्स डांस करते हैं।
0: ये हुई नवा। पूनम जी आप कुछ
2: आखिरी सवाल शौर्य जी कि भजन कौन गाएगा, इज इट जस्ट लाइक आप
0: लाइव होगा
2: रिकॉर्डिंग लाइव हो
1: तो ये जो है लाइव परफॉर्मेंस होगी पूनम जी, तो हम लोग गाएंगे प्लस वहां पे जो लोग आएंगे उनको भी मौका मिलेगा। तो ये जो है सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक बस गा रहे हैं, तो बट द होल पॉइंट इज कि सब लोग मिलके जब गाते हैं ना तो एक एनर्जी अलग आती है और कनेक्शन जो होता है भगवान के साथ फील कर सकते हो वहां पे आप फिर।
2: बहुत बढ़िया बिल्कुल ठीक
4: बहुत अच्छा बहुत अच्छा।
0: धन्यवाद सौर्य जी आपके समय के लिए एंड वी विश यू रियली ऑल द बेस्ट। भगवान आपको जो है ना इसके माध्यम से, पूनम जी ने मुझे आज पहली बार मालूम पड़ा कि भजन के माध्यम से भी भगवान को पाया जा सकता है
2: जी, तो कलयुग में यही कहा गया
0: है। टेस्ट थोड़ा सा बदल गया तो वरना मेरे जैसे लोगों को तो कोई चांस ही नहीं था। तो सौर्य जी अगेन धन्यवाद, आपका रविवार अच्छा हो, हम ऐसी कामना करते हैं।
5: क्या आप ऐसे काम की खोज में हैं जो आपको बहुत कुछ दे सके, ज्यादा जोश, ज्यादा ठोस काम, ऐसा काम जिससे आप अपने स्थानीय समुदाय में बदलाव ला सकें? पुलिस रिक्रूट्स सर्च करें, NSW पुलिस फोर्स, हमारा काम बहुत मायने रखता है।
6: 2OO स्टेशन स्पॉन्सर।
7: दर्पण रेडियो सुन रहे सभी श्रोतागण को प्यार भरी नमस्कार। क्या आप अपने प्रियजनों के लिए भरोसेमंद और स्नेहपूर्ण देखभाल की तलाश में हैं? श्री ओम केयर में हम वरिष्ठ नागरिकों के लिए सम्मान, गरिमा और घर जैसा माहौल देते हैं। हमारी सेवाओं में शामिल हैं इन होम केयर, डिसेबिलिटी केयर और डेमेंशिया व अल्जाइमर सपोर्ट। साथ ही स्पेशल सपोर्ट, एडवाइजरी सर्विसेज और संस्कृति व भाषा के अनुसार विशेष देखभाल। हम 24/7 असिस्टेड लिविंग, रजिस्टर्ड नर्सिंग, रेस्पाइट केयर और हेल्दी एजिंग एक्टिविटीज भी प्रदान करते हैं। हम माई एज केयर, NDIS और प्राइवेट केयर विकल्पों के माध्यम से आपकी पूर्ण सहायता करते हैं। श्री ओम केयर, जहां देखभाल परिवार जैसी लगती है। अधिक जानकारी के लिए आज ही कॉल करें 1300-908-681 या फिर वेबसाइट विजिट करें श्री ओम केयर.org.au। धन्यवाद।

0: Curry Master's complete curry mix available at all leading spice shops.
1: श्रोताओं, अब हमारा समय आ गया, जैसे कि हमने बोला है, हमारे प्रदीप जी द लेखक, जिसको कह सकते हैं राइटर प्रदीप जी, आज मैं आपका दर्पण रेडियो में स्वागत कर रहा हूँ. दर्पण रेडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है. प्रदीप कुमार सिन्हा द ऑथर.
2: थैंक यू यतीन्द्र जी, और दर्पण के सभी सुनने वालों को मेरा सप्रेम नमस्कार.
1: प्रदीप जी, जब मैंने आपका वो पहली बार जब आपने शेयर करी, लेकिन तो पहला प्रश्न मेरा यही होगा, मेरे आप जो है ना ये उलझन को कैसे आपने लिख ली?
2: अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, इससे पहले कि हम किताब के बारे में बात करें, बुक के बारे में बात करें, ऐसा है कि आप ज़रूर लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ी पेशेंस चाहिए. पेशेंस इस तरह चाहिए कि आप जब आपको मौका लगे अपना छोटे छोटे पॉइंट्स लिखते जाइए.
1: अच्छा,
2: एक पेज लिख लीजिए, आधा पेज लिख दीजिए, दो लाइन लिख दीजिए, फिर उसे थोड़ा सा एक्सपेंड करिए, फिर आप दूसरे दिन नहीं तो अगले हफ्ते लिखिए. इस तरह से एक साल दो साल में आपकी तैयारी हो जाएगी, काफ़ी मटेरियल होगा, फिर आप उसे कंपाइल कर लीजिए. देखिए, ऐसा है कि एक डिस्क्लोज़र मुझे ये भी करना है कि जो बुक है ये AI की हेल्प से कंपाइल की गई है. इसकी जो लैंग्वेज की पॉलिशिंग हुई है वो भी AI के थ्रू हुई है. तो ये है कि अगर आपके पास छोटे छोटे एपिसोड्स हैं, आपके पास जो आपके दिमाग में आता है वो अगर आप लिखेंगे, उसे आप कंपाइल कर सकते हैं. आजकल बड़ी आसानी से कंपाइल करके आप उसकी जो लैंग्वेज, तो वो थोड़ी सी रिफ़ाइन करिए और फिर उसे देखिए, उसे पढ़िए, उसको चेंज करिए आपको जैसा लगता है, एंड आप उसे पब्लिश कर सकते हैं. इस तरह से आप लिख सकते हैं. लेकिन अगर आप सोचें कि मैं सीजन राइटर की तरह आप कहीं अकेले में जाकर एक एयरबीएनबी में रहकर जहां समुंदर के किनारे आप बैठकर लिखेंगे, तो ये हम लोगों के लिए नहीं पॉसिबल. लेकिन आप छोटा छोटा लिखकर,
3: तो क्या मैं ये समझूं प्रदीप जी के जर्नलिंग उसकी शुरुआत है, स्टार्ट जर्नलिंग?
2: यस, आप अपनी डायरी लिखिए.
3: जी जी,
2: डायरी में
3: रोज के इवेंट्स,
2: रोज के इवेंट्स लिखिए. आप उसमें अपने विचार लिखिए, आपको किसी से आप मिले आपको कैसा लगा. जैसे कि आप कभी किसी से मिलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनसे आप बात करना पसंद नहीं करते हैं. ये सब कहाँ से आता है, इस बात की चर्चा भी इस मेरी किताब में है कि इसके, लेकिन मेरे ख्याल से इसे इस इसको थोड़ी सी देर के बाद,
1: ये मेरी क्यूरियोसिटी थी, इसलिए मैंने सबसे पहले यही प्रश्न आपसे पूछ लिया कि ये कैसे संभव हुआ. जो हम जैसे लोग हैं, कई चीज़ें दिमाग चलनी होती, कई चीज़ों में मैं जिस तरीके से जीवन को देखता हूँ, मैं वो लिखना चाहता हूँ. मैं दो चार जाने के पहले मैं दो चार पेंटिंग बनाना चाहता हूँ, और किस हर आदमी का एक अपना डायमेंशन होता है, ऐसे मैं समझता हूँ बात को. एक समस्या को, एक सुझाव को आप किस एंगल से देखते हैं वो आपका एंगल होता है. मैं ऐसे मानता हूँ, एक और चीज़ है कि हर आदमी जीती जागती किताब है.
2: बिल्कुल बिल्कुल,
3: हर एक के पीछे कोई ना कोई कहानी है,
2: हम सबकी कहानी अलग अलग है.
3: बिल्कुल,
1: हर आदमी अपने संस्मरण, अपने जीवन के अनुभव वो लिख सकता है, और यू डोंट नो कि किसके काम में क्या जाए.
2: कभी कभी यतीन्द्र जी ऐसा है कि आप आज घर जाइएगा तो एक पेज जरूर लिख दीजिएगा, फिर एक दो साल के बाद हम आपकी किताब का विमोचन करेंगे
3: और फिर आपकी सीटें पलट जाएंगी.
1: अब जैसे एक में एक शेर चलो कर ही लेता हूँ, अब ये शायद आपसे मैं हेल्प चाहता हूँ. दो महीने पहले एक मुझे कॉम्प्लीमेंट मिला, मैंने जीवन में कभी सोचा नहीं था ऐसा होगा मेरे साथ. वो ये कॉम्प्लीमेंट था कि तो हमारे नए क्लाइंट हैं, काफ़ी बड़े क्लाइंट होटलियर हैं वो, तो वो भी भारतीय हैं. तो उन्होंने कहा कि इतने दिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ. तो मैंने समझा कि ना फीडबैक टिपिकल जो होता है कि ना, मैंने कहा ना गो अहेड एंड डू इट. कहने लगे कि मैंने एक वो स्लीप अपेनियम मशीन आती जो सोने के लिए आती है, वो लेना बंद कर दिया है. मैंने कहा ग्रेट, बहुत अच्छी बात है. तो थोड़े पॉज के बाद वो कहते हैं कि ये आपकी वजह से हुआ है। मैंने कहा कि मैं अकाउंटेंट हूँ, बिफोर यू फॉरगेट, और ये मैंने कहा मैं अकाउंटेंट हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ भाई। देन ही सेड सीरियस मोड की, जब से आपने मेरा काम संभाला है आई कैन स्लीप पीसफुली। ऐसे मैंने लाखों डॉलर, और ये चीज़ एक कम्प्लीमेंट मेरे लिए, मतलब आप समझ सकते हैं। तो उस दिन मुझे फिर ये एहसास हुआ कि अकाउंटेंट का रोल कितना बड़ा है समाज में। मैं कई तरीके से उसको कर रहा था, लेकिन उस दिन वो टेस्टिमनी की
2: थी। अच्छा, यतीन्द्र जी, इसका एक और एंगल है, उन्होंने आप पर पूरा भरोसा दिखाया, पूरा, क्योंकि आप अच्छी तरह से काम करते हैं।
1: ठीक है,
2: अब यह है कि आपकी बात आपने रेडियो पर बताई, आपकी बात और लोग भी सुनेंगे तो उन्हें भी लगेगा मैं भी इसी तरह से काम क्यों ना करूं कि मुझे भी इस तरह का कम्प्लीमेंट मिले। तो ये जो इस तरह की पॉजिटिव बातें हैं ये बहुत दूर तक जाती हैं। आप ने इसे शेयर किया, बड़ी अच्छी बात है, और इसका इसके सब हर बात के रिपरकशंस होते हैं, इसका भी जिक्र इस किताब में है।
1: क्या बात है, क्या बात। तो हाँ नंदिनी जी, आप बताओ आप क्या सोचते हैं।
4: मैं एक्चुअली ना थोड़ी सी बुक के बारे में और पूछना चाहूँगी कि ये लाइक कैसे इंस्पायर हो के आपने क्यों स्टार्ट करा था बुक लिखना, और लाइक किसके बारे में एक्चुअली बुक।
2: बड़ा अच्छा प्रश्न है। या ऐसा है कि आपने जो यतीन्द्र जी पूछने वाले थे आपने पूछ लिया, बड़ी बातचीत। मेरा शुरू से मेरा दिमाग कुछ इस तरह से चलता है कि थोड़ा सा अलग करना चाहिए, कुछ अलग करो, बहुत दिनों से प्रयास ये था। फिर मैंने जो इस तरह की बुक्स काफ़ी पढ़ी कि स्पिरिचुअल बुक्स कि मरने के बाद क्या होता है, जैसे कि कई चीज़ें हैं जैसे नियर डेथ एक्सपीरियंसेस के बारे में आपको पता होगा।
4: हाँ जी,
2: लोगों को होता है। आपको पता होगा कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया जाता है तो वो अपने पास्ट लाइफ में चले जाती हैं, और इसके काफ़ी ऑथेंटिक प्रूफ हैं कि पास्ट लाइफ तो है ही। अच्छा, फिर इसके साथ साथ ये मुझे लगा कि कुछ इस तरह से किया जाए कि सारी कहानियाँ लिखी जाती हैं, जन्म हुआ और मृत्यु उसके बीच की होती हैं, क्यों ना हम इसे उल्टा कर दें कि मरने के बाद और अगले जन्म तक क्या होता है। तो इसमें मैंने सोचा कि सिर्फ ये नहीं है कि आप कुछ भी लिख दीजिए उसमें।
4: बिल्कुल, तो कि खुद एक्सपीरियंस तो करा नहीं है।
2: हाँ, खुद एक्सपीरियंस तो किया नहीं, किसी को याद भी नहीं रहता है।
4: बिल्कुल,
2: लेकिन मैंने सोचा ये देखिए नियर डेथ एक्सपीरियंसेस हैं और ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन वगैरह होते हैं इस तरह से, तो इसको किस तरह से इसको प्रस्तुत किया जाए। तो उसको मैं धीरे धीरे कुछ कुछ लिखता रहा, फिर ये बहुत जल्दी नहीं हुआ, काफ़ी टाइम समय लगा इसमें। लेकिन ये है कि ये इस बुक में सबसे पहले आदमी की मृत्यु होती है, हालांकि मुझे अब ये लगता है कि किसी चीज़ को स्टार्ट करना इस चीज़ से शायद
4: बहुत क्रिएटिव टेक है।
2: हाँ हाँ, एक्चुअली शायद पता नहीं कि इससे शुरू करना है या नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं ये शायद सोचता था सीधे सीधे मृत्यु से अगले रीइंकार्नेशन तक इससे किसी तरह से प्रस्तुत किया जाए। तो मेरे दिमाग में बहुत दिनों से था और कुछ कुछ मेरे पास लिखा हुआ भी था, तो मैंने सोचा कि चलो इसे कंपाइल करते हैं, और कंपाइल करके जिस तरह से ये किताब आई है ये मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं आई एम एबल टू डू दैट। एक्चुअली इसके कुछ पार्ट्स तो ऐसे भी हैं कि आई एम सरप्राइज्ड कि इट हैज़ कम आउट ऑफ मी। अच्छा, तो ये है कि इसके तीन पार्ट्स हैं। वन इज़ व्हेन वन डाइज कि कैसा उसे महसूस होता है।
4: तो ये लाइक आपने साइंटिफिक वे में ऐसे लिखा है या लाइक स्टोरी बुक फॉर्म में लिखा है?
2: स्टोरी बुक फॉर्म में।
4: ओके,
2: एक्चुअली इसमें ऐसा है, इसमें 25 चैप्टर्स हैं, इसके तीन पार्ट्स हैं। पहला है कि डेथ होती है उसे कैसा लगता है, क्या होता है। सेकंड पार्ट में देर इज एजुकेशन पार्ट, वो सीखता है अपनी कमियों से। थर्ड पार्ट में ही इज प्रिपेयरिंग टू रिटर्न बैक। तो पहले पार्ट में होता ये है कि उसका हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु हो जाती है, उसे पता नहीं लगता है. सडनली उसे लगता है कि अरे मैं अच्छी तरह सांस ले रहा हूँ, मेरा तो बड़ा मुश्किल से अस्थमा था मुझे, और मेरे यहाँ दर्द होता था, वहाँ दर्द भी नहीं है. बहुत कोशिश करता है, वो सोचता है कि ये हुआ क्या. फिर वो सोचता है कि कोई लोग वहाँ पर जमा होने लगते हैं, वहाँ पर एक बॉडी पड़ी हुई है, वो उठाने की कोशिश करते हैं. वो सोचता है अरे क्या हुआ, ये कहाँ से आया, उसे हेल्प करने की कोशिश करता है, लेकिन वो हेल्प नहीं कर पाता है क्योंकि उसका जो उसी की बॉडी है.
4: Wow.
2: और वो ही हैज़ गॉन इन टू सूक्ष्म शरीर. सूक्ष्म शरीर एक्चुअली ये कहा गया है अपने शास्त्रों में भी कि तीन बेसिक बॉडीज होती हैं. वन इज़ स्थूल बॉडी, जो कि हमारी पंच तत्वों से बनी होती है, जो कि जब हमारा क्रीमेशन होता है तो उसमें पंच तत्व में विलीन हो जाती है. दूसरी होती है स्थूल बॉडी. स्थूल बॉडी में आपका आपके तीसरा नेत्र खुल जाता है, आप देख सकते हैं, आप सुन सकते हैं, आप किसी से कम्युनिकेट नहीं कर सकते. अच्छा, इसमें एक और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपने सोचा होगा कभी कभी कि आप जब कोई काम करते हैं तो आपकी अंतरात्मा कहती है कि आप इसे करें या ना करें. सो दैट इज़ वेरी डीप बी सॉर्ट ऑफ पर्सनैलिटी विद इन यू. आपने कभी महसूस किया
3: जी, वो हायर बीइंग है जो आप.
2: अच्छा, इसमें क्या होता है कि जब वन गोज थ्रू दिस लाइफ रिव्यू में ऐसा होता है कि नॉट ओनली इट इज समथिंग लाइक, ये कहा गया है कि इट इज समथिंग लाइक होल ऑफ योर लाइफ इज शोन यू इन वन इंस्टेंट ऑल द डिटेल्स ऑफ इट. अच्छा, उसमें क्या होता है कि
4: कुछ 7 मिनट फ्लैशबैक कुछ ऐसा होता है ना,
2: वो हाँ जो भी है, लेकिन उसमें ऐसा होता है कि आप जब लिखने जाते हैं तो उसे इंस्टेंट में तो नहीं लिखा जा सकता, धीरे धीरे करके लिखा जाता है. तो जब उसे लिखा जाता है तो उसमें जो फीलिंग्स होती हैं, जो इंस्टेंसेस होते हैं, उसमें अगर मैंने यतींद्र जी से कोई बात कर दी जो यतींद्र जी को बहुत बुरी लगी, तो मेरी क्या फीलिंग थी उस बात को कहते हुए, मैंने क्यों कही और यतींद्र जी को कैसा लगा, ये दोनों की भावनाएं वहां पर आती हैं.
4: हाँ जी,
2: जब की लाइफ रिव्यू होता है तो उसमें तो इस तरह की बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं. और जो मैंने अंतरात्मा की बात की, तो थोड़ी देर के बाद वो ही hears समथिंग, तो उसे क्या लगता है कि ये कहाँ से आवाज़ आई, तो वो उसकी अंतरात्मा एक तरह से उसके साथ प्रकट होती है. एंड वो अंतरात्मा उसको ही टेक्स हिम ऑन एजुकेशनल जर्नी कि आपका ऐसा ऐसा हुआ था, ये काइंडनेस का क्या रोल है, अप्रिसिएशन का क्या रोल है, आपस की रिलेशनशिप का क्या रोल है. तो इसमें कई बातें हैं एक्चुअली. इसमें जो सेंट्रल थीम है उसमें ये विवेक जो हीरो है, उसकी वाइफ, दो बच्चे, और ये विवेक का एक और भाई है, छोटा भाई.
4: जी.
2: तो होता ये है कि उसकी माँ बीमार होती है, नर्सिंग होम में होती है इन दोनों भाइयों की. तो जो विवेक है बड़ा भाई, वो हर वीकेंड उसे देखने जाता है बड़ी लंबी ड्राइव करके 2 साल. छोटा भाई कभी जाता है कभी नहीं जाता है. इसी तरह से माँ की जब मृत्यु हो जाती है तो ये जो बड़ा भाई है ये सारे अरेंजमेंट करता है, और छोटा भाई फ्यूनरल के बाद थोड़ी देर बाद पहुँचता है तो उसे बहुत बुरा लगता है कि एक ऐसा भाई आया, माँ के उसमें नहीं आया या देर से आया. तो जब 13वीं होती है तो इस सब के सामने जितने रिश्तेदार होते हैं उसको उनके उस पर कमेंट कर देता है कि कुछ लोगों के पास समय नहीं है, तो छोटे भाई को बहुत बुरा लगता है. तो ये जो बात है उसके दिमाग में रहती है, मरने के बाद भी वो सोचते हैं यार मेरी गलती थी कि छोटे भाई की गलती थी, मुझे फ़ोन उठाकर उससे बात कर लेनी चाहिए थी। उन्होंने 11-12 साल तक बात नहीं की आपस में, जिस सिर्फ इसी वजह से। तो इस तरह ये कहानी है शुरू से लेकर आखिर तक। और जो ये जो अनरिजॉल्व बिजनेस है ना दो भाइयों का, ये दिस इज शोन एज वन ऑफ द रीजंस व्हाई वन हैज टू कम बैक।
3: जी,
2: जो कर्म हमारे अनरिजॉल्व रह जाते हैं उसकी वजह से हम बार बार
3: वापस
2: जन्म लेते हैं, जन्म लेते हैं। तो इसमें यह भी दिखाया गया है कि जैसे कि आपने बोला कि एक आप किसी ने अप्रिशिएट किया और आपको अच्छा लगा, आपने बताया लोगों को, तो उनको लगता है कि हमें भी अच्छा काम करना चाहिए।
0: एक मैं अगर बात कह दूं, मैंने इसका इस बात को ऐसे लिया है कि ये प्रोफेशन के लिए है। मैंने अपने से इसको हटा दिया है कि अकाउंटेंट का जीवन में कितना बड़ा रोल है। आज मुझे इस चीज़ को कहते हुए गर्व भी है और थोड़ा एहसास भी हो रहा है कि हमने इस चीज़ को पहले क्यों नहीं समझा कि अगर आपके पास में एक अच्छा अकाउंटेंट है वो आपको डॉक्टर के पास जाने से बचा सकता है।
2: उस आदमी ने अपना मास्क हटाया, उसके लिए बेनिफिट हुआ, आपके लिए बेनिफिट ये हुआ कि आपका भी ब्लड प्रेशर डाउन हो गया।
0: नहीं वो नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ कि
2: इसका दूसरा एंगल मैं बता रहा हूँ कि इससे समाज पर क्या फर्क पड़ता है। समाज में लोग जब अच्छी बातें सुनते हैं तो वो भी अच्छा करने की कोशिश करते हैं। कोई एक्शन ऐसा नहीं है जिसका असर नहीं होता है, हर एक्शन का असर होता है। तो हम कहाँ तक पहुँचे यतीन्द्र जी?
3: मेरे ख्याल से अब एक छोटे से अंतराल का
4: नहीं, बैक टू द प्लॉट। वो हम डिस्कस कर रहे थे कि वो छोटे भाई और बड़े भाई के बीच में अनरिजॉल्व्ड इशू रह जाते हैं, तो आप रीइंकार्नेशन के बारे में बात कर रहे थे उसमें।
2: हाँ, तो ऐसा है कि उसके दिमाग में एक कसक रह जाती है कि शायद मुझे फ़ोन करके उसे बात कर लेनी चाहिए थी, मेरा छोटा भाई है। लेकिन जब तक वो ज़िंदा था तब तक उसे लगता था यार ये बड़ा गधा आदमी है, मैं मतलब इतना इररेस्पॉन्सिबल है, मैं इससे क्या बात करूँ, उसकी गलती है, उसे फ़ोन करना चाहिए। लेकिन ये बात सिर्फ इसी बात को लेकर उसे ये लगता है कि उसे रिजॉल्व कर लेनी चाहिए थी।
0: तो एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं प्रदीप जी।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और फिर हम क्योंकि हमें स्पॉन्सर को भी ध्यान में रखना है, उनको भी हेल्प करना है, वो हमें हेल्प करते हैं।

0: Curry Masters Complete Curry Mix available at all leading spice shops.
1: श्रोताओं, आपको कम्युनिटी अनाउंसमेंट्स में बता दें कि हमारी ऋचा जी एक माता की नवरात्रि भजन नाइट का आयोजन कर रही हैं, जिसका नाम है ट्रिपल एस संगीत संस्कृति सनातन। तो ये जो माता की चौकी समझ लीजिए या माता के भजन होंगे नवरात्रि के दौरान 18 अक्टूबर को 5 से 9 तक इसका आयोजन है। ग्रेविला रूम, वेंटवर्थविल कम्युनिटी सेंटर, 2 Lane Street, वेंटवर्थविल। अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहें तो ऋचा जी को कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका नंबर है 04135612 93। तो ये तो ऋचा जी ऑर्गेनाइज कर रही हैं। फिर राजेश जी लिखते हैं, मैं कुछ सबके ख्यालात भी शेयर करना चाहूँगी हमारे इस प्रोग्राम के बारे में। गुड स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम। प्रदीप जी लिखते हैं, वाह क्या बात है, एआई का भजन। हेमलता जी लिखती हैं, नमस्ते टू दर्पण रेडियो एंड योर टीम, वेरी नाइस प्रोग्राम, इट इज़ अनबिलीवेबल, इट्स सो रियल एंड वेरी वेल संग, आई लाइक्ड इट। फिर जो अगला आया है विचार, वो ये है कि वेरी नाइस भजन, स्पेशली फॉर यंगर जनरेशन, इट विल कनेक्ट देम टू लॉर्ड गणेशा। लीला जी कहती हैं, एआई भजन बहुत ही अच्छा लगा। फिर एक आया है मैसेज, गुड मॉर्निंग दर्पण फैमिली, ग्रेट स्टार्ट विद न्यूज एंड आई एम सो इम्प्रेस्ड विद भजन क्लबिंग, एआई भजन हैज़ नो क्रिटिसिज्म बिकॉज इट इज़ अ प्रेयर, बट माई प्रेफरेंस फॉर प्रेयर वुड बी थ्रू अ पर्सन हु इज़ हार्ट टू हार्ट प्रेइंग। फिर लीला जी लिखती हैं, पूनम जी के सुंदर विचार पर आधारित मेरी एक स्वरचित रचना है जिसका नाम है सुंदरता मेरी नज़र में, जिसके प्रेम में प्रेम भरा, जिसके मन में प्रेम भरा हो, जो करुणा का गहरा सागर, उसका तन चाहे जैसा हो वह नर है सुंदरता आगर, जिसके दिल में सुंदर भाव हो, जो प्रभु को कण कण में जाने, जो सबको ही सुंदर समझे, जग उसको सुंदरतम माने, सेवा का जिस घर पर पहरा, सत्य जहां स्वागत करता, मुस्काने वहां द्वार खोलती, वह घर की सुंदरतम लगता, सत्य बात तो मधुरम भी हो, जो कर सके किसी का हित भी, जो जीवन को स्नेहिल कर दे, वह होती सुंदरतम निधि, यूं तो कोई नहीं कह सकता, झूठ भी जग में सुंदर होता, काम किसी का जिससे बनता, झूठ भी वह सुंदर ही होता, गोरे गोरे कोमल कर को जग में सुंदर माना जाता, लेकिन दान व कर्मशील कर सचमुच सुंदर है कहलाता, धोखे रिश्वत से आया धन, धन तो कहला ही सकता है, पर मेहनत से प्राप्त किया जो वह धन सुंदर कहलाता है, खिली हुई मुस्कान सरल सी, निर्मल दर्पण निर्मल शुभन, कभी बेयार बसंती सुंदर, कभी शीत आतप या फिर धन। तो इस तरह से लीला जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ी लंबी कविता आपने लिखी बहुत ही सुंदर ढंग से। क्षमा चाहूँगी पूरी नहीं पढ़ पाई क्योंकि बहुत सारे और भी मैसेजेस पढ़ने होंगे। भजन प्लस कभी क्लबिंग इज इक्वल टू भक्ति माइनस टेनमेंट। फिर एक आया है मैसेज, भजन क्लबिंग इज फॉर एवरीवन, आई अटेंडेड द बिग भजन क्लबिंग इन टाउन हॉल एंड इट वॉज फैंटास्टिक, ग्रेट फॉर ऑल एजेस, कॉन्ग्रेचुलेशन टू शौर्य जी एंड गुड लक। उत्तम विचार डॉक्टर प्रदीप कुमार सिन्हा जी, पुस्तक के लिए हार्दिक बधाई। वाई शुड आई परचेज अ बुक, वेयर इज द सस्पेंस। तो इनडायरेक्टली कहा गया कि पूरी बात ना खोलें। रामकृष्ण बंसल जी कहते हैं, अभी लाइव रेडियो सुन रहा हूँ, इंगेजिंग बातचीत और समुधर गाने। डॉक्टर लीला जी फिर लिखती हैं, डॉक्टर प्रदीप सिन्हा जी की वार्ता बहुत रोचक और प्रेरक लगी, प्रदीप जी पुस्तक के लिए हार्दिक बधाई। फिर आया मैसेज, नाइस रेडियो प्रोग्राम, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक बाय प्रदीप जी। ऋचा जी लिखती हैं, थैंक्स फॉर द अनाउंसमेंट, प्रोग्राम स्टार्ट्स विद नाइस एंड न्यू भजन फॉलोड बाय डिटेल्ड समाचार. नाइस इंटरव्यू विद प्रदीप जी. सॉन्ग्स आर ऑफ ग्रेट चॉइस. तो यतीन जी, आपको भी तारीफ कॉम्प्लीमेंट मिला है.
2: फाइनली
1: बहुत सुंदर गाने लगे हैं सब.
2: तो एक पूनम जी, हमारे समीर मेहता जी अभी फोन पे आ गए हैं
1: जी.
2: वो एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो नेपाली जो अभी वहाँ पे सुनामी आई उसके बारे में. समीर जी, आपका दर्पण रेडियो में बहुत बहुत स्वागत है.
3: मेरा बहुत बहुत नमस्कार
2: जी. समीर जी, बताइए, आपने जो नई संस्था आपने बनाई है और क्या प्रोग्राम करने जा रहे हैं उसके बारे में हमें बताइए.
3: मैं आपको, सभी श्रोताओं को बताना चाहता हूं कि नेपाल में जो डिजास्टर हुआ उसके बाद में हमारे सब कम्युनिटी लीडर साथ में आए हैं और हम लोगों ने अभी मिलके एक नई संस्था शुरू की है. वो जस्ट एट इन्फेंसी स्टेज. उसका नाम है ऑस्ट्रेलियन फाउंडेशन फॉर डिजास्टर रिलीफ. And then the purpose of the foundation is to collect money and then ensure that it reaches to the needy people at the ground at Nepal. So, उसके लिए हम लोगों ने अभी 18 अक्टूबर को एक इवेंट fundraising dinner organize किया है. और तो हमारे इसमें ऐसे कहने का था कि हम सब लोग अभी कम से कम 15-20 साल तो हो गए ऑस्ट्रेलिया में है, तो हम सब लोग अभी ऑस्ट्रेलियन है, तो एज ए ऑस्ट्रेलियन हम लोग क्या कर सकते हैं, कहाँ भी डिजास्टर हो तो उसमें हम लोग कैसे फंड इकट्ठा कर सकते हैं और इंश्योर कर सकते हैं कि मदद जो है वो एक्चुअल ग्राउंड पे जाए, उसमें एडमिन फीस ना हो. तो ये वजह से हम लोगों ने अभी ये फाउंडेशन चालू किया है. तो इसमें अपने बहुत कम्युनिटी लीडर साथ में जुड़ गए हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि जो मदद है वो एक्चुअल नीडी लोगों के पास पहुंचे.
2: तो ये इसमें DGR स्टेटस एक चीज होती है, वो भी है क्या?
3: Yes, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने. यस तो अभी हमारे पास तो DGR स्टेटस नहीं है फाउंडेशन के पास, क्योंकि अभी चालू हुआ है, लेकिन हम लोग जो सेवा ऑस्ट्रेलिया है, फिर रेड क्रॉस है और भी 2-3 संस्थाएं हैं, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं. तो जो कोई भी डोनेशन करेगा उसको DGR स्टेटस का रिसीट भी मिलेगा, प्लस वी विल ऑल्सो इंश्योर दैट देर वोंट बी एनी एडमिनिस्ट्रेशन फीस एंड फंड्स विल डायरेक्टली गो टू PM नेपाल केयर फंड आफ्टर दैट इट विल बी यूटिलाइज्ड फ्रॉम द फंड.
2: सो तो एक मैं बात कहना चाहता हूँ, आप लोगों को शायद जरूर मालूम होना चाहिए. मैं तो ऐसे कहता हूँ कि प्रदीप जी, यहाँ पे जो डोनेशन हम देते हैं ना, आप अगर $1 देते हो तो अगर 1/3 भी पहुंच जाता है कॉज के लिए तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है. 1/3
1: आप तो बाकी का सारा एडमिन फी और ये सब में निकल जाता है.
2: सारा का सारा उसमें निकल जाता है. आपको मिलते हैं ना, जैसे आप कभी रेलवे में जाएंगे तो लड़के खड़े होते हैं डोनेशन के लिए, वर्ल्ड विजन ये दे दो, उनको 1/3 लगभग 30-40% उनको जाता है.
3: वही प्रयास है कि जितना मतलब जीरो, कोई भी एडमिन फीस ना हो. समझो हमने 40,000-50,000 कलेक्ट कर लिया तो पूरा का पूरा पैसा उधर जाए. तो हम लोग तो जो फंड रेजिंग का डिनर का जो कॉस्ट भी है वो भी कम्युनिटी लीडर्स अपने जेब से पे कर रहे हैं. तो वी आर फंडिंग इट आवरसेल्फ सो दैट एंटायर मनी रीचेस टू द नीडी पीपल.
2: एक बार समीर जी दोबारा से जो प्रोग्राम का डिटेल है वो शेयर कर दीजिए, अपना फोन नंबर भी शेयर कर दीजिए.
3: श्योर. प्रोग्राम है 18 अक्टूबर को शाम को 5 बजे से ग्रैंड रॉयल ग्रैनविल में. और अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो मैं सभी से अनुवाद करता हूँ, आप भी जुड़ जाइए. लेकिन इट विल बी एन इनविटेशन ओनली इवेंट. तो आप मुझे कभी भी फोन कर सकते हैं. मेरा नंबर है 0431-317-685. मैं बताता हूँ 0431-317-685 एंड देन विल बी मोर देन हैप्पी टू ऑफिशियली इनवाइट यू फॉर द इवेंट एंड विल जस्ट इंश्योर दैट योर मनी रीचेस टू द नीडी पीपल.
2: समय दिया, आज आपने हमें जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद.
3: बहुत बहुत शुक्रिया गुप्ता जी आपका भी मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए और ये इनिशिएटिव के बारे में आपके सभी श्रोताओं को बताने के लिए.
2: धन्यवाद. प्रदीप जी
4: जी,
2: 18 तारीख को 2 तो प्रोग्राम अभी हो गए.
4: बड़ी अच्छी बात है कि हमारे समाज
2: में बहुत फंक्शन हो रहे हैं,
4: एक्टिविटी हो रही है.
2: तो थोड़े एक दो और हम आपसे बातें करें.
4: बिल्कुल.
2: कि एक जैसे कि आसमा जी ने बोला है कि भाई सस्पेंस शेयर नहीं करना है वरना फिर लोग क्यों खरीदेंगे किताब को।
4: नहीं, इसका सस्पेंस ऐसा है कि खरीदेंगे क्योंकि क्योंकि उस अंतरात्मा जो उनके साथ आ गई उन्हें गाइड कर रही है
2: जी।
4: कैसे गाइड किया, क्या बताया,
2: वो हर वक्त वो उसमें
4: किस तरह के सीन से। तो जैसे कि एक सीन मैं और बता देता हूँ कि विवेक हीरो आए अपने ऑफिस से, जूते उतारी थे कि उनकी बेटी आदिति आ गई उनके पास कि पापा पापा देखो मेरे ड्राइंग। पापा ने देखा, थैंक यू, उसी समय फ़ोन बोला, फ़ोन रिंग किया तो उन्होंने फ़ोन उठा लिया। तो वो बच्ची को अच्छा नहीं लगा। तो ये जो भाव था बच्ची का, किस तरह से उसको महसूस हुआ और उनका इग्नोरेंस, वो सब उनके सामने आ गया। तो ये इससे काफ़ी, इट इज़ सॉर्ट ऑफ एजुकेशन हाउ टू लिव लाइफ। तो इसी तरह के
1: बहुत बढ़िया के अन सेड थिंग्स,
4: हाँ,
1: जो आप उस समय नहीं रियलाइज करते, बट उसने जिस कंडीशन में अब थे वो,
4: हाँ,
1: तो वो सारे भाव उनको अब आ रहे हैं
4: दोनों तरफ के, अपने भी अपने और उनके भी। सो इट इज
1: एजुकेशन। ये मामूली सी बात है, आपका बच्चा आया और बात की, आपने फोन अटेंड करने में लग गए तो आप इस बात को भूल जाते हैं
4: कि आपके लिए फोन ज्यादा इम्पोर्टेंट
5: है। और ये ना जैसे लाइक एवरेज डे टू डे लाइफ रिलेट कर पाएंगे लोग, तो कि ये बहुत लाइक कॉमन इंस्टेंसेस होते हैं, ये सबके साथ होते हैं, तो ये बुक वो उनको एक नया पर्सपेक्टिव देगी कि ऐसे भी लोग फील कर सकते हैं इस बात को।
2: प्रदीप जी, मैं आज मैं खुद भी अपनी कुछ चीज़ें शेयर कर रहा हूँ आपसे और श्रोताओं से सबसे। मैं डेली डायरी लिखता हूँ।
4: बहुत अच्छी बात है,
1: फिर तो आप
4: और तो
1: किताब लिखने की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई।
2: मैं काफ़ी डायरियाँ हो गई होंगी, आप समझ सकते हैं कि मैं बता नहीं सकता हूँ क्योंकि उम्र में लोगों को मालूम पड़ जाएगी, जबकि मैं अभी 18 साल का हूँ। तो मैं क्या करता हूँ प्रदीप जी, मैं पूरे दिन को रिबजट करता हूँ, रात को सोने के पहले लिखता हूँ और फिर मुझे एहसास हुआ ओह मैंने प्रदीप जी को कुछ ऐसे बोला, चाहे भले ही प्रदीप जी ने नोटिस करा या नहीं करा, मेरा क्या काम होता है

0: आई डिडंट मीन इट. अब वो आपके हाथ में है, आप मुझे माफ करते हैं या नहीं करते हैं. लेकिन मैंने अपने आप को उससे निकाल दिया है.
1: इस बात का भी जिक्र इसके बाद में है.
2: सही कह रहे हैं.
1: इस बात का भी जिक्र है इसमें. और इसमें ऐसा है, खास बात यह है कि आप कोई भी चैप्टर खोल लीजिए, कोई भी पार्ट, आप उसे सॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंटली पढ़ सकते हैं. छोटी छोटी
0: छोटी छोटी
1: कहानियाँ हैं.
0: तो मैं समझता हूँ कि जो आप अगर जीवन जिएंगे तो गलतियाँ ये सब तो होगा
1: बिल्कुल होता है,
0: वरना पैरानॉइड हो जाओगे. लेकिन उसका एहसास होना और उस एहसास को आपको आगे एक्सप्रेस कर देना कि भाई रियली आई एम सॉरी, या यू नो जो भी आपका भाव है,
1: ये आपको रिलीज करता है. हाँ, जैसा आपने कहा,
0: वो माफ करे ना करे वो अलग की बात,
2: आपकी तरफ से हो गया.
0: एग्जैक्टली,
2: बहुत बढ़िया.
0: वो एक मेरा पहलू रहता है और मैं काफी सालों से मतलब ये चीज कर रहा हूँ और इट गिव मी, मैं उससे निकल जाता हूँ फिर. और फिर एक और मेरा भाव होता है कि कल का ये इतने दिन मर चुका है, लेट्स लिव टुडे.
1: ठीक है, अच्छी बात है,
0: बात खत्म.
1: हाँ बिल्कुल.
0: उसके ऊपर ये नहीं, कल मैंने बोला तो मैं खड़ा हूँ, अरे भाई हो गया क्या करेंगे. अच्छा ये बताइए, आपने ये अंग्रेजी में क्यों लिखी? अब हिंदी का रेडियो प्रोग्राम भी करते हो,
1: हिंदी का प्रचार और प्रसार भी कर रहे हैं. देखिए ऐसा है कि जो मेरे पास लिखा हुआ था वो अंग्रेजी में था. हिंदी की टाइपिंग पहले इतनी आसानी से नहीं होती थी, अब तो आसान हो गया है काम, हिंदी में हो जाता था. तो उसे लिखा, इसका एक रीज़न तो ये था कि भाई रेडीमेड माल है उसे बना दो. दूसरा ये था कि मैंने सोचा, देखिए ऐसा है कि आप भारत में तो काफ़ी कुछ नॉलेज होती है लोगों को, लेकिन विदेशों में अगर ये पढ़ी जाएगी तो इसका कुछ इनपुट उनके पास भी जाएगा, क्योंकि ये हमारी भारतीय संस्कृति की ये बहुत कुछ इसमें झलक है.
0: तो आपने लिखा है कि जैसे एक ओम करके आपने लिखा है इसमें, इंस्पायर्ड बाय वैदिक विजडम. तो आपने वेदों का भी यहाँ पे
1: बिल्कुल
0: तो सरल भाषा में, अगर मैं ऐसे समझूं, सरल भाषा में आपने वेदों का भी जिक्र करके लोगों तक पहुँचाए. एम आई राइट हियर? और
1: यस बिल्कुल ठीक है.
0: अच्छा,
1: इसमें जो भी ये बातें कही गई हैं वो सारी वेद संगत हैं. मतलब ये है कि
0: इसमें 1.164.46
1: नहीं, वो तो ये जस्ट कोटेशन, इसके अंदर एक और कोटेशन,
0: एक
1: और इसके अंदर एक और कोटेशन है. और जो मैक्स मुलर ने 1880 में लिखा था अपनी बुक के साथ, अपने कमेंट के साथ, तो वो भी है. लेकिन इसमें ऐसा है कि यतेंद्र जी, इसमें जो हर चैप्टर है, चैप्टर इज कुड बी इंडिपेंडेंटली रेड. आप जैसे ही काइंडनेस के बारे में बताया गया है, आपकी ये क्षमा मांगने के लिए के बारे में बताया गया है, इसमें आपके जो भी एक्शंस हैं उसके क्या रिपरकशंस होते हैं, कहाँ तक जाता है. जैसे कि एक बच्चा बेंच पर बैठा हुआ है, वो रो रहा है, 6-7 साल का है. तो ये लेडी आती है, पूछती है कि क्या हुआ बेटा. वो बोलता है कि मम्मी कहाँ है, मुझे मिल नहीं रही है, मम्मी अलग हो गई है. तो उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं तेरी मम्मी को ढूंढती हूँ. तो ढूंढा, बच्चा चला गया वहाँ से. अब बच्चे पर इतना असर होता है उस बात का, वो बड़ा होता है, डॉक्टर बनता है. तो वो बड़ी अच्छी तरह से अपने पेशेंट्स को देखता है, उनसे अच्छी तरह से बात करता है और उनकी जो बातें सुनता है. तो हर बात का आदमी की पर्सनैलिटी पर फ़र्क पड़ता है, स्पेशली बच्चे को किस तरह से आप डील करते हैं उसका बहुत फ़र्क पड़ता है. तो ये भी इसमें एक छोटी सी वो है, कहानी है.
3: आई थिंक ओवरऑल जैसे मैंने अभी थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट करा था, बहुत अच्छे से लिखा गया है, इट्स लाइक वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. और तो कि इंग्लिश में लिखा गया, जैसे मैं हिंदी नहीं पढ़ सकती, तो आई थिंक जो यंगर जनरेशन जो हिंदी समझ सकते हैं और हिंदी कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हैं या जो हमारे कल्चर में से आ सकते हैं बट वो हिंदी पढ़ नहीं सकते, तो आई थिंक उनके लिए भी बहुत अच्छा है. लाइक ये लाइक अ यंग ऑडियंस कैन ऑल्सो रीड दिस.
0: एक प्रश्न पूछता हूँ मैं, कई चीज़ें आपसे अपनी आज जिक्र कर रहा हूँ. मैं कोई काम नहीं कर रहा,

0: ये हाथ काम कर रहे हैं, इस शरीर काम कर रहा, मैं नहीं कर रहा, मैं उससे अलग हो जाता हूँ। मैं जैसे किसी की हेल्प करी और उसका जो भी होना आया, हुआ नहीं हुआ, नहीं हुआ, वो मुझे धन्यवाद के लिए, मैं कहता हूँ भाई लिसन, ये मेरे जीवन में आपका इतना हिस्सा था, आप लेके गए, आई एम नथिंग टू डू विद दैट। मेरे जो मेरे जुबान से भी कुछ चीज़ अभी निकल रही है वो मेरा नहीं, काम खत्म करो।
1: तो आप ऑब्जर्वर बन गए, ऑब्जर्वर बन के कीजिए, डूअर बन के।
0: मैं नहीं कर रहा हूँ, बस मैंने खत्म कर, अगर इस भाव से मैं कोई काम कर रहा हूँ तो मेरा कोई कर्म ही नहीं है, मैं क्यों उसमें फंसूँ।
2: बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली आपकी बात से मुझे एक बात याद आ गई, हमारे एक प्रवीण गोयल जी हैं, वो यहाँ पर आए थे, उनका इंटरव्यू कई साल, दो साल तो हो गए, उनके उनसे बात हो रही थी, तो वो उन्होंने एक इंसिडेंट बताया कि कोई आपके सामने जा रहा है, उसका हैंकी नीचे गिर गया, आपने कहा अरे आपका ये गिर गया है, आप ये ले लीजिए, तो उसने अपने लिया, अपने पॉकेट में रख लिया, आगे चल दिया। तो आपको लगा कि यार इस आदमी ने थैंक यू ही नहीं बोला, अगर आपको ये लगा कि आपने उसने थैंक यू नहीं बोला तो एक कर्म हो गया आपका।
0: एग्जैक्टली, बिल्कुल।
2: लेकिन अगर आपने कोई बात नहीं, आपने सोचा ही नहीं इसके बारे में, तो जैसा कि आप कह रहे थे ये अकर्म हो गया, इससे आपका कोई बंधन नहीं है।
0: एक्चुअली इन हाथों से काफ़ी लोगों का हेल्प हुआ है, मैं मालूम क्या करता हूँ, उनको बोलता हूँ कि मेरा फ़ोन नंबर डिलीट कर दो, और वो जो दिवाली हो उसके जो आते मैसेज वगैरह फॉरवर्ड करके आते हैं ना, वो मैंने कहा वो भी नहीं, और कहीं मिलूँ मुझे पहचानना भी नहीं, और मैं एक्चुअली मैं खुद भी, मैं जैसे कोई मिला तो मैं देखता हूँ तो ऐसे करके देखूँगा, क्रॉस करके निकल जाता
2: हूँ, तो ठीक नहीं,
0: तो मैं क्यों उसको उस चीज़ की याद दिलाऊँ, वो उस समय था, वो डिफ़िकल्ट वाला समय होता है जीवन में, मैं क्यों उसको याद दिलाऊँ।
2: नहीं, तब भी अपना मतलब ये है कि आप प्रेम भाव रखिए, उसको याद करने की
0: जरूरत है, अगर वो रखना चाहता है वो अलग की बात हो जाती है, लेकिन मैं क्यों उसको उसमें लेके जाऊँ ना, मुझे देख के उसको वो दिन याद आएंगे। एनीहाउ, मैं कहाँ अपना वो सब, अच्छा ये बताइए, तो अभी ये किताब कोई कैसे खरीद सकता है, कहाँ पे कैसे, क्या चल रहा है?
2: देखिए अमेज़न के स्टोर पर चले जाइए, या वेबसाइट पर जाइए, वहाँ बुक सेक्शन में जाकर ड्रॉन बैक टाइप करिए,
0: तो DRAWN ड्रॉन बैक, तो जो इसका किताब का नाम भी है वो इंग्लिश में, तो वहाँ ड्रॉन DRAWN बैक BACK ये नाम है, और उसमें आप लेखक के नाम से भी डाल सकते हैं, डॉक्टर प्रदीप कुमार सिन्हा, और अब किताब आपको मिल जाएगी और डिलीवर हो जाएगी।
2: आपने एक सवाल नहीं पूछा है सर।
0: जी जी जी,
2: ड्रॉन बैक तो आपने पढ़ लिया, लेकिन आपने पूछा ये नाम क्यों रखा।
0: अभी अभी अब उस पर आते हैं, लेकिन एक सेकेंड, तो जो लोग खरीदना चाहते हैं, आप बहुत अच्छी बुक है, और मेरे हाथ में ये बुक है, बहुत खूब खूब बहुत देखने में भी अच्छी है, मैं ये कहने की कोशिश करता हूँ, जो पेज है प्रदीप जी आप बता रहे थे कि आप नहीं इसको डिज़ाइन करा, तो सारा कुछ आप,
2: मैंने डिज़ाइन किया एक्चुअली, ये ChatGPT 3 इसका जो कवर है, कवर मैंने ChatGPT से डिज़ाइन किया।
0: मैंने कुछ नहीं कहा पूनम जी।
2: नहीं नहीं, ये तो
1: नहीं ये तो अच्छे ढंग से ChatGPT का इस्तेमाल
0: किया। अच्छा चलिए, अब आप बताइए मुझे कि ड्रॉन बैक कैसे नाम आपने डाला, क्या?
2: मैंने कई नाम सोचे थे
0: जी,
2: जैसे कि पैरेलल यूनिवर्स, क्योंकि पैरेलल है वहाँ कोई वो, जनरली आप एक से दूसरे में नहीं जा सकते हैं। फिर मैंने सोचा, फिर किसी ने कहा कि यार पैरेलल यूनिवर्स से ये लगता है कि ये जैसे कि साइंटिफिक फिक्शन है।
0: ओके,
2: अच्छा, तो फिर ये लगा कि ड्रॉन बैक दिमाग में आया क्योंकि इट इज़ इनवॉलेंट्री, आप अपनी मर्जी से जन्म नहीं लेते हैं, आपका जन्म होता है क्योंकि आपके कार्मिक डेट्स हैं, कार्मिक बंधन है आपके, इसलिए आपका पुनर्जन्म,
0: ना अपनी मर्जी से जन्म होता है ना अपनी मर्जी से मृत्यु होती है
2: आपको।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है जो मालिक ने ये चीज अपने हाथ में रख ली, वरना AI के आने के बाद कोई जिंदा ना बचता।
2: बोलिए,
0: तो एक छोटा सा ब्रेक लिया जाए,
2: बिल्कुल
0: ठीक है ना, और उसके बाद में हमारे नए मेहमान भी, मेहमान नंबर 2 जिसको कह सकते हैं, वो भी आ गए हैं, उनसे भी हम आपका परिचय कराते हैं।
3: This is what your bicycle sounds like to drivers as you approach an intersection. You're totally silent. Drivers can't hear you, so make sure they can see you. Wear a brightly coloured helmet and clothing when riding. We're all just people on the move, so let's look out for each other on our roads. A message from the New South Wales Government.
4: 2 Triple O's station sponsor.

0: भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है?
1: बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें आनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au।
2: Every Sunday, listen to the Hindi show 98.5 FM Radio 2000.
3: हर रविवार सुनिए दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 FM पर सुबह 9 से 11 बजे तक।
4: आप श्रोताओ, हमारे दूसरे मेहमान भी आ चुके हैं। सुमित जी, आपका दर्पण रेडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
5: थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी यतिन जी। इट्स अ वंडरफुल।
4: आपके बारे में हमने लिखा था, आपने हमारा जो ग्रुप वगैरह उसमें लिखा था कि आप सनातन या सात्विक फूड के हेड हैं।
5: नहीं नहीं,
4: ऐसे करके मैं
5: सेवा कर रहा हूं।
4: लेकिन आप परिचय दीजिएगा। पहले थोड़ा हमें अपने बारे में बताइए और आप ये जो भागीरथ प्रयास अगर मैं बोलूँ वो कर रहे हैं उसके बारे में बताइए।
5: तो यतिन जी, मैं वैसे तो बाय प्रोफेशन आई एम अ रियल एस्टेट एजेंट एंड वास्तु कंसल्टेंट, बट इस चीज़ के बारे में हमें पता चला जब मैं आईटी में, आई थिंक 2021 में मैं वो इस बारे में पता चला था। इट वाज शॉकिंग ऐसे हुआ
4: कोविड के टाइम पे।
5: हैं
4: कोविड के टाइम,
5: कोविड से शायद 6 महीने पहले, शायद 2020 की बात होगी फिर। ये मे बी इट वाज क्वाइट अर्ली इन द स्टेज। हाँ, 2020 की बात है। और हमें जब इसके बारे में पता चला तो हुआ क्या कि मैं अपने बेटे के लिए वाइटामिंस लेने गया और वाइटामिंस की बॉटल पे मैं, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं चेक करता हूँ जेलेटिन्स वगैरह तो नहीं है।
4: अच्छा अच्छा, हाँ सही।
5: इसी में तो मैं जब वो देखने लगा तो प्रोडक्ट वेजिटेरियन था बट उस पर लिखा था नो हलाल सर्टिफाइड या कोशर सर्टिफाइड। मैंने बोला यार, वेजिटेरियन प्रोडक्ट में हलाल सर्टिफाइड, आई डोंट गेट इट, यू नो, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि है क्या चीज़। तब मेरी जर्नी शुरू हुई।
4: अच्छा।
5: और फिर मैंने 2-3 अपने फ्रेंड्स को जिनके साथ में रोज का उठना बैठना है, जो कुछ जो कम्युनिटी लीडर्स हैं उनके, उनको बताया। एवरीबॉडी वाज शॉक्ड। उन्होंने कहा ठीक है।
4: तो लोगों को जागरूकता नहीं थी?
5: मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं थी। और आज भी हमें बहुत काम, आज भी बहुत काम करने
6: की। क्या बता रहे हैं, मैं आटा लेने गई तो वहाँ आटे के ऊपर लिखा हुआ है
4: चावल दाल।
7: इसमें हलाल की क्या बात हुई?
4: शुगर
6: ये इसका कुछ हिस्सा उनको जा रहा है, which is not fair.
5: Actually, thing is कि मुझे समझ नहीं आता, जब जो चीज़ नेचुरल है, आटा नेचुरल है, चावल नेचुरल है, राइट, हाउ दैट कैन बी हलाल और नॉन हलाल और सबके लिए बराबर है, और हाउ दैट कैन बी कोशर और नॉन कोशर फ्रॉम माई परस्पेक्टिव।
8: आई थिंक इट्स लाइक अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी कि लाइक अपने ऑडियंस को बस वो लाइक थोड़ा सा स्टैंप लग गया तो अपने वो ऑडियंस को टारगेट कंज्यूमर ऑडियंस को
6: इट इज उनको भी कवर कर रहे हैं।
5: इट इज बिगर देन दैट। इट इज नॉट जस्ट द मार्केटिंग स्ट्रेटजी।
4: अच्छा, तो बताइए क्या है फिर।
5: मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हमारे लिए एक शॉकर आया था शुरू में कि बिग ब्रांड्स इन इंडिया जो अब स्टैंप भी नहीं लगाते वो भी हलाल हैं, जिसमें से एक था शायद अमूल बटर और अदर दूसरे ब्रांड्स थे, वेरी रेनोन्ड स्वीट ब्रांड्स आर ऑल्सो हलाल सर्टिफाइड और सारे वेजिटेरियन हैं। तो मैंने बोला इसमें ऐसा क्या है?
4: अमूल वाला भी कहते हैं,
5: इज फ्रॉम द नॉलेज वी गॉट सो फार। या वी एक्चुअली एंड अप रनिंग इनटू वन ऑफ देयर एक्स एम्प्लॉयज एंड शी टोल्ड अस लॉन्ग टाइम बैक। तो एज ऑफ टुडे मेरे पास कोई वो नहीं है, बट उनकी वेबसाइट पे शायद मिल जाएगा कि ये सर्टिफाइड है कि नहीं है। और इन्होंने पता चला कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट सर्टिफाई करना है तो इनकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि इनकी जो फूड चेन है, इनकी प्रोसेसिंग चेन है, वो पूरी की पूरी हलाल सर्टिफाइड हो। तो हुआ क्या कि सपोज करिए मैं एक आटा बना रहा हूँ, ठीक है, या आटे के साथ ये बेकिंग ब्रेड बना रहा हूँ, ब्रेड शुड बी हलाल सर्टिफाइड। सो मेरी रिक्वायरमेंट ये होगी कि पहले मैं जाऊँ जहाँ से मैं वीट ले रहा हूँ उसको भी हलाल सर्टिफिकेट लेना है, जो उनसे एंजाइम्स या यीस्ट या उसमें डलेंगे ब्रेड मेकिंग में, बटर डलेगा, मैं उसको भी हलाल सर्टिफिकेट लेना, वरना मैं उससे अगर मैं नहीं लेता, वो हलाल सर्टिफिकेट नहीं लेते तो मेरी ब्रेड हलाल सर्टिफाइड नहीं होगी। सो अब हुआ क्या कि एक ब्रेड को बनाने के लिए मुझे 5 या 6 बिजनेसेस को बोलना है भाई मैं तुमसे तब लूँगा जब तुम हलाल सर्टिफाइड होगे, ठीक है। उसके बाद वो 5ों को जब ये सर्टिफिकेशन लेना था उनको अपनी सप्लाई चेन में जाके बोलना है कि भाई मैं तब मुझे ये चाहिए क्योंकि मेरा जो अच्छा। बायर है बड़ा बायर है उसको वो सर्टिफिकेशन के लिए हलाल सर्टिफाइड। अब वो अपने छोटे सप्लायर्स को बोलेंगे या फार्मर लेवल तक जा रहे हैं। इनफैक्ट आई वॉज इन कैनेडा एंड आई वॉज सरप्राइज वेरी मच सरप्राइज एक ग्रोसरी स्टोर में हलाल गार्लिक और नॉन हलाल गार्लिक था।
4: Oh my God.
5: मैं शॉक्ड, मैंने बोला गार्लिक जो फ्रेश वेजिटेबल है इवन दैट इज कैन बी सो दैट इज आई एम नॉट सेइंग लुक यू ईट व्हाट यू वांट टू ईट, यू ईट व्हाट योर रिलीजन अलाउज। मैं कह रहा हूँ कि बींग अ हिंदू बींग अ पर्सन फ्रॉम अ डिफरेंट फेथ वी वैन वी सेलिब्रेट अवर कल्चर वैन वी सेलिब्रेट अवर यू नो फेस्टिवल्स जब हम पूजा करते हैं एटलीस्ट उसमें आप ये सर्टिफिकेट सर्टिफाइड फूड ना डालें क्योंकि हमारी वैल्यूज़ के हिसाब से जो भी फूड नेचर देता है वो अनबायस्ड होता है वो प्योर होता है। तो हम जैसे सनातन में सात्विक का बहुत महत्व है। सात्विक का एक मतलब ही यही है कि प्योर एंड अनबायस्ड, मतलब उस पर किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं है। यू नो आप जब भगवान को ऑफर करते हैं तो आप पूरे से अपने श्रद्धा से ऑफर कर रहे हैं और वो फूड किसी ने टच भी नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल जब हम दिवाली की पूजा करते हैं किसी भी फेस्टिवल की पूजा करते हैं तो हम खाने को खाते भी नहीं टच भी नहीं करते और इस भाव से ये इनफैक्ट कई पंडित तो ये कहते हैं ये भी भाव नहीं आना चाहिए कि आपने टेस्ट करना है जब तक आपने भोग ना लगाया हो। तो अगर इतनी शुद्धता से और भाव इस भाव से अगर हम अपने प्रसाद को चढ़ाते हैं भगवान पे जिसे नैवेद्यम बोलते हैं तो हम कोई भी रिलीजियस सर्टिफाइड फूड अपने भगवान को कैसे दे सकते हैं।
8: बिल्कुल जैसे आपने कहा था वो गार्लिक वाला एग्जाम्पल एक्चुअली में मुझे थोड़ा सा जानना है वो उसके ऊपर हलाल लाइक
5: नहीं नहीं उस पर बस व्हाट आई वाज थिंक इट वाज आई डोंट इवन रिमेंबर कि कौन सी शॉप थी बिकॉज मैं केम किसी फ्रेंड्स फैमिली से मिलने गया था इट वाज फ्यू इयर्स बैक बट उस पर क्या था कि एक जगह लिखा था गार्लिक और एक जगह लिखा था हलाल गार्लिक ऐसा कुछ था। मैंने लग आई वाज शॉक्ड मैंने कुछ पूछा ही नहीं क्योंकि मैं बस मैं जल्दी में था बट दैट वॉज ऑल्सो चेंज कि ये इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। मतलब अभी जो मेरे सुनने में आया है दे आर बिल्डिंग्स आर बींग कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया which are halal building and non halal building
8: but iske piche like reasoning kya hai ki agar like natural food sources vegera hain jinme like animals vegera ka kuch lena dena nahi hai yahan par like we're talking about garlic jo roots se aata hai plants hai to inme aisi production labels aise kyun lag rahe hain
6: mere khayal se australian government bhi requirement
5: nahi aisa hai dekhiye pehle to jo based on our research and we can be wrong because we are still learning every day new things right तो बेस्ड ऑन आवर रिसर्च दिस इज़ अ रिक्वायरमेंट मोस्टली इन मिडल ईस्ट कंट्रीज़ कि भाई आप हलाल सर्टिफाइड नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स दो। अब उसको उन्होंने एक्सपेंड करके वेजिटेरियन इस अम्ब्रेला को एक्सपेंड करके वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स में या नॉन ईटेबल प्रोडक्ट्स में भी डाल दिया है। अब हुआ क्या है कि बिजनेसिस डोंट वॉन्ट टू लूज द बिजनेस एंड जस्ट फॉर दैट दे बाय दिस सर्टिफिकेट और कोशर सर्टिफिकेट वट एवर एनी रिलीजियस सर्टिफिकेट्स ऑफ वट्स एवर वी आर नॉट अगेंस्ट एनी वन पर्टिकुलर कम्युनिटी और वो कहते हैं कि भाई जब तक ये आप ये नहीं लोगे आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। अब ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करती है सो दैट देयर प्रोडक्ट कैन बी एक्सपोर्टेड टू मिडल ईस्ट कंट्रीज, ठीक है, विच इज़ फाइन। बट आप उसको नॉन जो दूसरी कम्युनिटीज़ में उस सर्टिफिकेशन की कॉस्ट को क्यों चार्ज करवा रहे हो, पहली तो बात ये है। सेकेंडली मतलब आज कोई भी सर्टिफिकेट कॉस्ट फॉर एग्जाम्पल आई थिंक आई सॉ सम आई हैड सम डाटा जो वेबसाइट पे लिखा था किसी की कि दे चार्ज लाइक $2,000 to $10,000 टू सर्टिफाई द प्रोडक्ट और समथिंग। नाउ इफ यू चार्ज $2,000 to $10,000 एंड इफ द कंपनी हैड 10 प्रोडक्ट्स यू आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट $100,000 टू मे बी मोर आई एम नॉट श्योर। नाउ इफ $100,000 वो कहीं ना कहीं से तो चार्ज करेंगे ना, एज अ कंज्यूमर वो हमसे चार्ज करेंगे।
4: बिल्कुल।
5: नाउ वी आर पेइंग दैट मनी फॉर वट बेनिफिट इट्स गोना ब्रिंग टू अस और इन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक प्रोडक्ट ऑलरेडी गवर्नमेंट बॉडीज़ ने अप्रूव कर दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया में FSSAI है, यहाँ पे TGA है, ऑस्ट्रेलिया में वो ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है, अब उस पर सर्टिफिकेट कोई भी रिलीजियस सेंटीमेंट्स का लगता है विच इज़ ओके इफ दे वॉन्ट टू डू इट, बट एज अ नॉन बिलीवर ऑफ दैट फेथ वट बेनिफिट इट्स गोना गिव इट टू मी।
4: आप मुझे बताएंगे कि जैसे कि मान लो कोशर है या हलाल है, मान लो आटे पे लिखा है, आटे को कुछ मीट तो होता नहीं उसमें कुछ।
5: हाँ जी नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं होता।
4: मेरे भी हिसाब से नहीं होता। तो अब उसमें अगर किसी ने हलाल लिखा है तो व्हाट इट मींस
5: प्रैक्टिकली रिलीजियसली आई डोंट नो व्हाई इट मींस बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम दैट फेथ और नॉट फ्रॉम द ज्यूज और अदर कम्युनिटी बट मेरे को जो इकोनॉमिकली लग रहा है दिखा है और जो नंबर्स हैं एज ऑफ टुडे बेस्ड ऑन द आई थिंक इट्स $3.5 trillion इकोनॉमी वर्ल्ड वाइड हलाल It's not billion.
4: It's a lot of money.
5: It's 3.5. So it's I think it's more of a monetary incentive also. But look, again, ये उनका religion है या किसी का भी religion हो जैसे मेरा कल religion है मैं कोई सात्विक certified food खाना चाहूँ तो मेरी मर्जी है right? But at the same time मेरे पास choice तो होनी चाहिए कि मुझे ये नहीं खाना आज क्या है कि आज हम किसी भी products Woolworths चले जाएँ Kohl's चले जाएँ किसी में भी चले जाएँ आई थिंक अराउंड 30-40% प्रोडक्ट्स पर तो स्टैंप लगी है
8: Yeah.
5: लेकिन बाकी इस प्रोडक्ट्स पर स्टैम्प भी नहीं लगी
4: yeah.
5: मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यू विल बी सरप्राइज्ड
4: अगर स्टैम्प नहीं लगी तो क्यों पैसा देगा
5: वो सर्टिफिकेट ले लेते हैं बट दे डोंट पब्लिकली
4: एडमिट ओके जो पैसा फिर भी जा रहा है
8: आल्सो आई थिंक कि जब वो स्टैम्प लगा देते हो ना हलाल या कोशर का या व्हाटएवर फेथ रिलीजियस स्टैम्प यू पुट ऑन उसकी जो एक्चुअल प्रोडक्ट की वैल्यू है वो भी भर जाती है Because you will find
7: वही तो हमें कम होनी चाहिए हमारे लिए
8: exactly.
4: इतनी महंगाई हो रही है
5: नहीं मेरे हिसाब से वो कुछ वैल्यू ऐड करे या वो मेरे पूजा के रिलीजियस पूजा के उससे अलाइंड हो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि एटलीस्ट मैं उसको देखिए सिंपल सी बात है अगर मैं आज झूठे हाथ से ग्लास ही पकड़ता हूँ तो मैं वो ग्लास मैं मंदिर में नहीं ले जा सकता मैं पूजा के लिए वो ग्लास को यूज नहीं कर सकता जब तक मैं ग्लास को दोबारा धो ना लूं साफ पानी ना डालूं और तब भगवान को अर्पण करूं मैं जब वो नहीं कर सकता तो मैं कोई भी दूसरे रिलीजियस का ऑफर्ड फूड अपने भगवान को कैसे दे सकता हूं पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है लेट्स से कि वो रिलीजियस ऑफर्ड होता है नहीं होता है नहीं होता है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट जो सर्टिफाइड है इसमें कोई रिलीजियस प्रेयर्स नहीं करी है इसमें करी है वी डोंट नो व्हाट आई वांट इज फ्रीडम टू चॉइस And also just to spread awareness in our community कि भाई आप जो मर्जी अपनी डेली लाइफ में खाओ ये आपकी मर्जी है कम से कम हमारे फेस्टिवल्स में और हमारे मंदिरों में वो सेंटिटी मेंटेन करो मैं मंदिरों के मैनेजमेंट से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई फॉर एग्जांपल देखिए अभी तिरुपति बालाजी का केस हुआ था सबको पता है कि वहाँ पे जो प्रसाद था उसमें एनिमल फैट मिला था जो कि बिल्कुल ही अगेंस्ट है हमारी वैल्यूज़ के How much anger and you know disappointment we Hindus had at that time, right? We just wanted.
4: क्या उन लोगों को crucify करा गया था? उन लोगों को मार दिया गया कि नहीं मार दिया?
5: ऐसा नहीं होता आपको पता है. Crucifixion.
4: भगवान को बलि चढ़ाई जाती है ना?
5: नहीं नहीं हमारे यहाँ नहीं चढ़ाई जाती. कैसी बातें कर रहे?
7: अच्छा ये बताइए कि आप इसके लिए क्या स्टेप्स ले रहे हैं
5: देखिए हमने पहले 2-3 साल अपनी कम्युनिटीज के अलग अलग ग्रुप्स में जाके अवेयरनेस फैलाई आज अब हम पहला फर्स्ट इवेंट कर रहे हैं 18th ऑफ अक्टूबर को
4: अच्छा तीसरा इवेंट हो रहा है
5: अच्छा तो 18th ऑफ अक्टूबर को फर्स्ट इवेंट होगा 18th ऑफ अक्टूबर इवनिंग को और इसकी टिकट्स इवेंट ब्राइट पे हैं मैं स्पेशली जो हिंदू कम्युनिटी के चाहे वो कहीं से भी हों चाहे वो फिजी इंडियंस हों चाहे वो नेपालीज हों कहीं से अफ्रीका बेस्ड हिंदू जो भी ऑस्ट्रेलिया में हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उस पर रजिस्टर करें जो बिजनेसमैन हैं जो कम्युनिटी लीडर्स हैं जो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आए जुड़ें एक्सचेंज द आइडियाज़ वी गोना हैव अ ग्रेट पैनल ऑफ यू नो इंडिविजुअल्स हु गोना हैव अ गुड डिस्कशन ऑन दिस मैटर दे गोना पुट देयर पॉइंट ऑफ व्यू वी आर जस्ट डिस्कसिंग कि वेदर इट इज़ अ राइट डिमांड टू पुट दैट थिंग इन अवर कम्युनिटी और नॉट फर्स्ट ऑफ ऑल And if it is a right demand, how to spread awareness, at least to maintain the sanctity of our religious place.
4: तो मैं श्रोताओं से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ श्रोताओ आपने कभी नोटिस करा है कि जैसे एक आटा का बोरी वो खरीद रहे हो क्या उसमें आपने पढ़ने की कोशिश करी कि उसमें कुछ ऐसा कुछ लिखा है या केवल आप आटा देखा ब्रांड का नाम देखा एक्सपायरी डेट देखी और बात ख़त्म हो गई आप अपने विचार हमारे साथ शेयर कर सकते हैं आपका इस बारे में क्या अनुभव है और क्या आप जो सुमित जी मुहिम चला रहे हैं जो पूरा मूवमेंट चला रहे हैं क्या उनके साथ में आप जुड़ना चाहेंगे क्या आप सोचते हो कि ये वर्थ कॉज है या ये वेस्ट ऑफ टाइम है हमारे साथ में अपने विचार शेयर करिए इफ़ यू वांट टू कॉल मी आल्सो माय नंबर इज़ 0421 590-7921 590-7921। और हमारे साथ में जो सुमित जी हैं, सुमित जी आपने जैसे बोला कि आपको 4-5 साल हो गए जुड़े हुए इससे, आपका अनुभव क्या रहा अब तक कि इतने प्रयास, आपने क्या क्या प्रयास करा और आगे का आपका क्या प्लान है?
5: देखिए जो अभी तक हमारा रहा है यही कि लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस ही नहीं है
4: जी।
5: स्पेशली तो हमारा फर्स्ट एफर्ट यही है कि लोगों को बताएं, उनके फीड, लोगों का फीडबैक लें, ये जानना चाहते हैं कि लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। फिर हमने कम्युनिटी लीडर्स और मंदिरों से कॉन्टेक्ट किया कि क्या हमारे सनातन धर्म के हिसाब से मंदिरों में ऐसा फूड भगवान को अर्पित किया जा सकता है, नहीं किया सकता। ज़्यादातर ऑलमोस्ट यूनानिमसली सब ने मना करा कि जो चीज़ ऑलरेडी किसी को अर्पण हो चुकी है वो हम अपने देव को, अपने ईष्ट को अर्पण नहीं कर सकते। तो ये चीज़ हमने पहले 2-3 साल इस पर काम किया। अब हम कुछ लोगों से साथ मिलकर, कुछ वॉलंटियर्स हैं हम सारे, वी आर नॉट वर्किंग फॉर एनी मनी और एनी इंसेंटिव्स हियर। सो अब हम कुछ लोग मिलकर के फर्स्ट इवेंट कर रहे हैं टू गेट द कम्युनिटी लीडर्स टुगेदर टू गेट देयर फीडबैक एंड टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग इन्फ्लुएंशियल पीपल सो दैट दे वर्ड और आगे जाए और इसके बारे में हम कुछ कर सकें, ताकि हमारी कम्युनिटी को पता हो कि वो क्या खा रहे हैं, क्यों उन्हें क्या खाना चाहिए, क्यों नहीं खाना चाहिए, उनकी चॉइस है, बट हम उनको नॉलेज तो दें। और वही चीज़ क्या वो चीज़ हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से भगवान को अर्पित की जा सकती, नहीं की जा सकती?
4: वैसे तो काफ़ी लोग कॉन्शियस हो चुके हैं, मैंने ये देखा है कि लोग पढ़ते हैं, क्योंकि खाने में आज के रेट पे आप मैं आई एम नॉट एक्चुअली पैरानॉइड, लेकिन इवन जो रॉ फूड आ रहा है, क्या वो वाकई में टमाटर है? अब यहाँ तक प्रश्न हो रहे हैं।
5: ये तो मैंने भी पहली बार सुना है।
4: नहीं नहीं, क्या हो रहा है कि जो हमारे अमेरिकन हैं वो कुछ भी करते हैं, जो हमारे सीड आते हैं वो इस तरीके की सीड बनाए, अब आपने देखा होगा कि जैसे एप्पल है ख़राब ही नहीं होता, बनाना आप खा रहे हो वो चले जा रहा है, तो उनके बीज को उनको सब मॉडिफाई कर दिया है एंड सब हो रहा है। अभी जो यंग लोग हैं, जैसे ऑर्गेनिक का काफ़ी खाने का आपने सुना होगा, मैं काफ़ी ऑर्गेनिक खाने की कोशिश करता हूँ, जो भी मिल जाता है इट डज हेल्प अ लॉट। आप जैसे दूध होता है, आप जो नॉर्मल वाला टिपिकल मिल्क होता है और जो समझो A2 वाला आप मिल्क लेते हो और ऑर्गेनिक मिल्क लेते हो, जमीन आसमान का फर्क है। मैं ऑर्गेनिक पीता हूँ इसलिए मैं बता रहा, मेरा खुद का अनुभव मैं बता रहा
6: हूँ। क्या
4: नहीं, उसमें क्या होता है कि जैसे कि ऑर्गेनिक में तो जो गाय को जो खिलाते हो ना आप, उन 100-100 किलो एक दिन में दूध देते हैं मालूम आपको, तो वो कैसे आता है वो तो?
5: पर जितेंद्र जी, ऑर्गेनिक फूड भी आज की डेट में हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, देयर आर लॉट ऑफ मिडिल क्लास फैमिली।
4: मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अफोर्ड कर सकता है कि नहीं कर सकता है, मैं ये कह रहा हूँ कि लोग आज की डेट पर कॉन्शियस है, क्योंकि आप अपने शरीर को खाना भी प्योर नहीं दे सकते हो तो क्यों?
5: बिल्कुल सही बात
6: है। जी आपको क्या फायदा?
4: हाँ मैं बताता हूँ आपको, ये मैंने शुरुआत करा था करीब उसको 20 साल हो गए होंगे और उस समय तो 3 गुना महंगा होता था। तो जैसे रात को हमारे यूपी वाले रात को दूध पीते हैं सोते हैं, तो सवेरे ना सलाइवा बहुत गंदा होता था बहुत, और धीरे धीरे ना वो बहुत परेशान करने लगा। तो उस समय ये ऑर्गेनिक मिल्क का आना शुरू हुआ, तो पहले ही दिन इट वॉज सो गुड, नो जो है ना वो एक खराब सब खत्म हो गया। और फिर बॉडी में भी आपको मालूम पड़ने लगता है कि ये जो सिम्टम ऐसा था जो आई कुड नोटिस इमीडिएटली, लेकिन आपका बाद में भी मालूम पड़ते हैं। आप पाएंगे कि अगर आप ऑर्गेनिक, मैं ऑर्गेनिक का, मैं आई एम नॉट ए शेयर होल्डर इन एनी ऑर्गेनिक कंपनी डिस्क्लोज, लेकिन आप पाएंगे कि आपके जीवन में बहुत फर्क पड़ रहा है।
9: सुमित जी, मुझे ये लगता है कि इसका एक ही सोल्यूशन है कि ऑल्टरनेटिव अवेलेबल होना चाहिए। ऑल्टरनेटिव अवेलेबल ही नहीं है तो क्या करोगे?
4: नहीं नहीं, ऑर्गेनिक का
9: नहीं, ऑर्गेनिक की बात नहीं कर रहा,
4: अच्छा सॉरी,
9: हलाल की बात कर रहा हूँ।
5: देखिए मैं हमेशा ही कहता हूँ कि फ्रीडम ऑफ चॉइस होना चाहिए।
9: हाँ बिल्कुल,
5: ठीक है। आज की डेट में मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं पहले जब हमने इसकी एक लिस्ट बनाई थी 2020 में, हमने एक लिस्ट बनाई, हम इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स पे गए क्योंकि हमारा फोकस सिर्फ इंडियन फूड पे था पहले, कि इंडियन ग्रोसरी स्टोर पर अगर देखने गए कि भी कितने प्रोडक्ट्स पे हलाल सर्टिफाइड है. सो मी एंड टू अदर वॉलंटियर्स स्पेंड अराउंड 5 वीकेंड्स वन आफ्टर अनदर. सुबह जाते थे, दोपहर तक वहीं रहते थे.
4: समय जी काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर आपकी ये वाली बात पर शुरू करते हैं. ठीक है ना
0: भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है?
1: बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है. इसमें आनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया व सभी मसाले मिले हुए आते हैं. ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है. इट्स सो इजी. इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au.
10: This is what an approaching bicycle rider sounds like when you're driving. Absolutely silent. You can't hear them, so remember to keep an eye out for them and check your mirrors and blind spots regularly. And when passing at 60 k's or under, allow a 1 meter gap between you. We're all just people on the move, so let's look out for each other on our roads. A message from the New South Wales Government.
11: 2OO's station sponsor.
2: You can listen to community announcements and sponsorships on our website, dapanradio.org.au.
3: आप हमारी सामाजिक सूचनाएं और स्पॉन्सर्स के संदेश हमारी वेबसाइट dapanradio.org.au पर देख सकते हैं.

0: contact The Hindi Show for sponsorship and phone 0413 385 976.
1: Darpan Hindi Karyakram mein sponsorship ke liye sampark kare phone number 0413
2: 385 976. Pradeep ji, thode aur sawal baki hain. Aapne kafi kuch ke jo sab jawab de diye hain. Ye reincarnation. आप इसमें बिलीव करते हैं?
3: हाँ, बिल्कुल करता हूँ. देखिए, ऐसा है कि ये बिलीव वाली बात तो ये है कि अगर आप बिलीव करते हैं इसका मतलब आपको नहीं पता. आपने अगर सदगुरु को सुना है तो अक्सर ये कहते हैं कि इफ़ यू से आई बिलीव, इसका मतलब आपको पता नहीं है. तो ये पता तो नहीं है, लेकिन ऐसा है कि सरकमस्टांशियल एविडेंस, मेरे ख्याल से हमारी लॉयर बता सकती है कि वो ऐसा है कि हमारे ऋषि मुनि ने इतनी तपस्या की, हमारे रग रग में इस तरह की फीलिंग है कि हाँ होता ही है. तो उस विचार से कि हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा है, हमारे कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है.
2: बात सुनिए, मैं आपको रियल एग्जांपल देता हूँ. एक लेडी है, आई थिंक इटावा में कहीं पे, वो गाँव में, पढ़ी लिखी नहीं, कोई एक्सपोजर नहीं बाहर का, ठीक है. शी गॉट मैरिड, एक बच्चा होता है, उसका हस्बैंड कहीं चला जाता है, तो वो शी वाज बिट ऑफ अलोन, कहीं बाहर काम करने के लिए जैसे आते हैं. सडनली एक दिन ना उसकी डेथ जैसी हो जाती है. और बाय द वे, ये इंटरनेशनल वो है एक केस जहाँ पे काफ़ी दुनिया के लोग भी आए, तो वो उसको लाके वो लिटा रहे हैं, सब कर रहे हैं. और थोड़ी देर में एकदम उसके अंदर एक वो जान आ जाती है. शी स्टार्ट टॉकिंग इन बंगला इंग्लिश.
3: अच्छा,
2: वो राइटिंग भी करने, उसने कभी लिखा नहीं.
3: ऐसा है ये तिंदे, इस तरह के हजारों केसेस डॉक्यूमेंटेड हैं,
2: वही मैं कह रहा हूँ. तो अब फिर जो उससे बात की कि नहीं, मैं उसने जिस लेडी का उसके अंदर वो आ गया, तो वो उसने बताया
4: कि खबरें आए दिन आती रहती हैं कि किसी बच्चे को अपना पूरा पिछला जन्म याद आ गया. हाँ. वो क्यों फिर किसी लेडी को याद आया, तो वो उस गांव गई वहाँ. हाँ. वो लोग मौजूद थे जहाँ से.
2: लेकिन मैं पूछा था प्रदीप जी से इस किताब के बारे में.
3: हाँ.
2: कि आपने, क्योंकि इसकी जो पृष्ठभूमि है आपकी इस किताब की, उसमें इसका काफी बड़ा रोल है रीइंकार्नेशन का. और जिसमें दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि डू यू रिमेम्बर पास्ट लाइफ बेसिकली.
3: हाँ हाँ हाँ.
2: तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो?
3: अक्सर प्रश्न लोगों का ये होता है कि हम पास्ट लाइफ रिमेम्बर क्यों नहीं करते हैं. देखिए, एक तो ये है, ये मेरे विचार से ये सेफ्टी स्विच है. अगर आपको अपनी सारी पास्ट लाइफ याद आ जाए तो आप पगला जाएंगे.
2: मैं तो उसको ये कहता हूँ कि इवन जो करंट लाइफ में जितना भूलो उतना अच्छा.
3: अच्छा,
4: लेकिन
3: आपके जो संस्कार होते हैं, जैसे ही आप जो काम कर रहे हैं तिंदर जी, ये संस्कार आपके दिमाग में रहते हैं, आपके सूक्ष्म शरीर में होते हैं. आप जब पुनर्जन्म होता है तो वहीं से शुरू करते हैं आप. ये जो टेंडेंसीज बन जाती है ना हमारी, कि अच्छा दान देना है, ये करना है, वो करना है, ये एकदम ये आपके सूक्ष्म शरीर में के साथ जाती हैं.
2: व्हाट अबाउट जेनेटिक, कि आपके माँ बाप से नहीं आते हैं?
3: माँ बाप से अगर आती होती तो जुड़वा बच्चे एक से होते, जुड़वा बच्चे भी एक से नहीं होते हैं, सब उनका करेक्टर अलग अलग होता है.
2: एक और बात कही जाती है कि जो बेटा होता है बाप के कर्मों का प्राश्चित होता है.
3: अब ये तो बड़ा मुश्किल है कि क्या होता है, लेकिन ये तो बड़ी जटिल
2: अपने कर्म है,
3: अपनी जटिल समस्या है ये. तो इस पर भी रोज शोध किया जा सकता है, लेकिन मुझे
2: बुक नंबर टू
3: मुझे पता नहीं है क्या होता है, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगा है.
4: जो रिश्ते भी बनते हैं वो कर्मों के हिसाब से ही बनते हैं.
3: हाँ.
4: तो आपका किसी के साथ कितना जुड़ाव है,
2: ये भी पास ही है,
4: और कितना जुड़ाव है आपका किसी के साथ, और आपका कैसा रिश्ता रहा. वो बच्चा जिसको जो आपके घर में पैदा हुआ, आपने उसके साथ पिछले जन्म में कुछ बुरा किया, तो वो उसका अब आप सिंपल वर्ड में कहेंगे बदला लेने के लिए. अब वो, क्योंकि अगर आप खत्म नहीं करते हैं वो जैसा कि आपने कहा कि मैंने सुबह उठ के प्रदीप जी से.
2: अच्छा प्रदीप जी, एक काम करते हैं, समय समाप्त होने को आए. हाउ टू कंक्लूड योर अवर डिस्कशन रिगार्डिंग योर बुक? ऐसा क्या आखिर में हमारे
3: मुझे तो कहना मेरी जो ये बुक है वो इस तरह की है कि ये बुक क्लब टाइप की जगह बड़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो डिस्कस किए जा सकते हैं। जैसे आपने अभी कहा तो आप गोष्ठी कीजिए कि रीइंकार्नेशन पर क्या है, कहाँ लिटरेचर अवेलेबल है, या पास्ट लाइफ क्यों नहीं याद रहती, ये सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो डिस्कशन के पॉइंट्स हैं।
2: आप दोबारा से हमें अच्छा बता दीजिए कि किताब अमेजोन पर मिलेगी और इस किताब का नाम है श्रोताओं ड्रॉन बैक, DRAWN बैक, और ऑथर का नाम है आपको प्रदीप PRADEEP कुमार सिन्हा।
3: इसका मैं शेयर कर दूंगा अभी इस पर अपने व्हाट्सएप
2: वो जो भी प्राइस है, अमूल किताब है ये। अच्छा सुमित जी आप अपने फोन में व्यस्त हैं, आप कंक्लूड करें क्योंकि समय बिल्कुल खत्म हो गया।
5: हम कहां किस टॉपिक पे, सॉरी
2: आप ये बता दीजिए कि अब आपका प्रोग्राम कब है, कहाँ पे है,
5: हाँ जी,
2: और आप इस प्रोग्राम के थ्रू क्या अचीव करना चाहते हैं और हमारे श्रोता आपको कैसे मदद कर सकते हैं।
5: देखिए पहले तो हमारी एक वेबसाइट है sattvikcouncil.com। हम अगर कोई श्रोता हमें सबको फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं देर इज़ अ बैंक अकाउंट डिटेल्स, यू कैन सिंपली डोनेट द मनी देयर, वी नीड मनी टू फॉर द इवेंट्स। सेकेंडली हमारा फर्स्ट इवेंट है 18 अक्टूबर को, 18 अक्टूबर को
2: कितने बजे हो, कहाँ पे,
5: डोन मोर कम्युनिटी सेंटर।